श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। और लीजिए सुनिए, स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत दिनकर शर्मा के बजाय हारमोनियम पर राग नट भैरव।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दिनकर शर्मा द्वारा बजाए हारमोनियम पर राग नट भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक

0: मतदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकर। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 6:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

सुबह के 6:28 और 25 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

0: इसी के साथ ही वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया, ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा। बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है, जो है तीन सार्वभौमिक सत्य, चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक आर्य मार्ग। तीन सार्वभौमिक सत्य, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया, तीन सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मांड में कुछ नहीं खोता, ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। मनुष्य मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं। कारण और प्रभाव का नियम, बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चार आर्य सत्य, बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख का सच, जीवन में सभी मनुष्य किसी ना किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है। बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। उस मार्ग का सत्य है जो हमें दुख से मुक्त करता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक आर्य मार्ग, अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए आठ महान मार्ग निर्धारित किए हैं। वे हैं सम्यक समझ, ये चार आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। सही विचार, सम्मा संकल्प, व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। सम्यक वाक, हमें सदैव दयालुता पूर्वक सचेत होकर दूसरे का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। सही कर्म, सम्मानता, इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छे व्यवहार करना शामिल है। सम्यक आजीविका, सम्मा अजीव, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी आजीविका ना कमाएं और दूसरों को दुखी करके खुशी ना पाएं। सम्यक प्रयास, सम्मा वयम, इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सही जागरूकता, इसका तात्पर्य स्वयं, शरीर, दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा, लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सम्यक एकाग्रता, संपूर्ण समाधि, चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनियतता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पांच सुझाव भी दिए हैं। ये हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा या जान लेने से दूर रहें, जो ना दिया गया हो उसे लेने से बचें, चोरी ना करें, इंद्रियों के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें, झूठ ना बोलें और दूसरों के बारे में गलत बात ना कहें। किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बालकांड भाग 122।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया।

0: अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर सुबह के 7:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इंद्रेश मिश्र के गाए भजन। तबले पर हैं रितु मिश्रा, सितार पर संगत की है रईस अहमद ने, और हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष।

संगीति का कार्यक्रम में अभी आप इंद्रेश मिश्र के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज की इस महकती हुई सुबह में गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उगते हुए सूरज की मध्यम सी धूप, ठंडी हवा का झोंका और हाथ में चाय का प्याला, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो दिल अपने आप गुनगुना उठता है।

हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, बीत गई जो रात उसे भुलाती है। मुस्कुरा कर तो देखो इस नए सवेरे को, ये ज़िंदगी जीने का एक नया अंदाज़ सिखाती है। बिल्कुल दोस्तों, कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और अपने आज के दिन में मुस्कुराहट से एक नई कहानी लिखिए। ज़िंदगी यही है दोस्तों, रात को हम सब थक कर सो जाते हैं और सुबह एक नई ऊर्जा के साथ फिर से लग जाते हैं। वैसे दोस्तों, आज जब मैं सुबह आ रही थी तब बारिश की हल्की हल्की सी फुहार पेड़ पौधों पर देखकर बहुत ही ताज़गी का अनुभव हुआ और बहुत ही लुभावना था सब। और निकलिए आप भी बाहर और आनंद लीजिए इस बारिश का।

दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर एक सकारात्मक विचार से हो तो क्या बात है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आज के दिन को सिर्फ ऐसे ही नहीं बिताना है, बल्कि खुल कर जीना है और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाना है।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, खूबसूरत पल हमेशा बहुत ही जल्दी बीत जाते हैं। हम चाहे उन्हें कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर फिर भी वो भागते ही चले जाते हैं। और आप सब साथ होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपका दिन बहुत ही अच्छा, ऊर्जावान और सफलताओं से भरा रहे, इसी कामना के साथ अब मैं आपकी दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। और हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेज़ी में और फिर उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
3: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन

संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।

0: नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
2: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
3: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
2: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गाँव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान

0: अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुनीष। देश की

0: राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting.

0: and Joe Root was adjudged player of the series. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakel.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age informs Shah to introduce Rajya Sabha Vande Mataram Protection Bill today. Armenia and Saudi Arabia, among six nations eyeing India's battle-tested Astra missiles, headlines the Hindu Business Line. In its editorial piece titled Two Pillars of Space Success, Hindustan Times writes, a robust talent pipeline will ensure India's continued public sector success and spur private sector momentum in the space sector. From punching above its weight with a low-cost Mars orbiter mission to establishing itself firmly in the club of elite space-faring nations with its superstardom, India has enough claims to space superstardom. Also, India became the third country in the world after the US and China to have private sector capacity in orbital launch, a critical threshold demonstrating technological sophistication. In the Sun Times headlines, Sindhu ends two-year title drought in style, adding the 31-year-old become first Indian to win Japan Open, combining relentless attack and tactical discipline and composure. And finally, coming soon in Gujarat, a life-size Harappan town with markets, dockyards. Very soon, visitors to Lothal, one of the most prominent outposts of the Indus Valley civilization, will be able to get a feel of walking through the Harappan streets and civic spaces, informs the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of Parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब माई सांदू से वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुस से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस व मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नज़रअंदाज करने की रोकथाम से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے میٹنگ کے بعد نامہ

0: इशारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशउसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलों पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली ज़िले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफ़ा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बाकिया इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चेसिनाव में मालदोवा की अपनी हमबनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। किसी भारतीय सदर का मालदोवा का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुँचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नज़दीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड UCC बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड UCC पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के ज़िले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में UCC बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असम्बली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर आला यादव ने नामानिगारों को बताया कि UCC से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाज़त नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्त कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: राजौरी और पुंछ ज़िलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों ज़िलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। पूरे ज़िले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासर हुई है, जबकि राजौरी ज़िले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनक़ हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। محکمے نے ریاست کے بہت سے حصوں میں شدید

0: से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमे मौसमियात के मरकज़ ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर ज़िले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नज़र कांगड़ा, चंबा और सिरमौर ज़िले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई ज़िलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतज़ामिया अलर्ट के पेश नज़र हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
2: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, होड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नज़र पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नफानिगार से।
3: मुजफ्फरनगर ज़िले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनहदिम होने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर ज़िले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई ज़िलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ्त में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताज़ा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताज़ा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फ़ौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फ़जाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिज़ाइल और ड्रोन के ज़खीरों की जगहें भी शामिल हैं। अमरीकी फ़ौज ने इस्लामी पासदारान इनकलाब की फ़ौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फ़ौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाज़े की हालिया शिद्दत के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए एक ताज़ा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफ़र करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफ़र मुलतवी कर दें जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आर्जी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खौस करें और इसके लिए वो जो भी परवाज़ें दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को ये हिदायत भी दी है कि वो अपनी ज़ाती मालूमात सफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएँ। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नज़र रखें, ताकि वो ताज़ा जानकारी और मज़ीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की मदद के लिए सफारतखाने ने ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, +98 9128 10915, +98 9128 10915, +98 9128 10902 और +98 99 32 17 9359। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में कल देर रात स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप 2026 का चैंपियन बन गया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना

0: के खिलाफ जीत का वाहिद गोल खेल के 106वें छठे मिनट में किया। ये गोल स्पेन के फेरन टॉरेस ने किया। इससे पहले दोनों टीमों की तरफ से 90 मिनट के खेल के दौरान सख्त जद्दोजहद के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। स्पेन ने दूसरी बार मर्दों का फीफा आलमी कप जीता है। इससे पहले उसने 2010 में पहली मर्तबा आलमी कप जीता था। स्पेन के कप्तान को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि स्पेन के ही उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लोव का अवार्ड दिया गया है और पाउ कुबारसी को नौजवान खिलाड़ी का अवार्ड अता किया गया है। फ्रांस के खिलाड़ी लियान मबापे को फीफा आलमी कप 2026 का गोल्डन बूट अवार्ड नवाजा गया है। मर्दों की क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने तीसरे एक रोज़ा बैन अलाक्वामी मैच में भारत को 27 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा के शानदार 138 रन, शुभमन गिल के 77 रन और विराट कोहली के 74 रन के बावजूद भारत की टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी, जिसे जीत के लिए 388 रन का निशाना मिला था। इस तरह इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शेख सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को नुमाया किया है कि सभी पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे ताकि बिलों पर मुकम्मल बहस हो सके।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मालदोवा की अपनी हमबनसब माइया सांदू से वक्त की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताज़ा सैलाब और ज़मीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 8:45:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में स्वर गंगा कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे मैत्रेय मजूमदार का गायन राग नट भैरव में। हारमोनियम पर हैं कौशिक मित्रा और तबले पर संगत की है सुमित राम धोकर ने। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आपने मैत्रेयी मजूमदार का गायन सुना राग नटभैरव में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 9:15 और 4 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

0: ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 10 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूँ कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च जुलूस प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि UCC विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी।

इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालदोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालदोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मालदोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्य

0: the center to J&K. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for internationals in view of recent increase in levels of instability and conflict in Iran. It has advised internationals intending to travel to Iran for any purpose to postpone travel for time being until the security environment improves. It said Indians already in Iran should consider temporarily exiting Iran using available flight options. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in an extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. French striker Kylian Mbappe gets Golden Boots award in FIFA World Cup 2026. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं और साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी। श्रोताओं, सुबह के 10:10 हुए हैं और ये समय है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं, सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और स्वीकार करें मेरा प्रेम भरा नमस्कार। शुरुआत करने से पहले आज आप सभी को और विशेष तौर पर उन खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो अपने अथक श्रम से, अपनी कड़ी मेहनत से खेलों में उपलब्धियां हासिल करते हैं। आज विश्व शतरंज दिवस है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और श्रोताओं, शतरंज केवल मनोरंजन का खेल नहीं बल्कि धैर्य, एकाग्रता, रणनीतिक सोच और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम भी है। इसकी जड़ें भारत की प्राचीन चतुरंग परंपरा से जुड़ी मानी जाती हैं, जिसने आगे चलकर आधुनिक शतरंज का स्वरूप ग्रहण किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विश्व शतरंज जगत में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की और अपनी विरासत का प्रमाण विश्व को दिया। विश्वनाथन आनंद द्वारा तैयार की गई मजबूत नींव पर आज नई पीढ़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रचा, वहीं आर प्रज्ञाना नंदा ने विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देकर भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाया। विदित गुजराती अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी जैसे खिलाड़ियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। हाल ही में दिव्या देशमुख सहित कई भारतीय खिलाड़ियों को फिडे के उत्कृष्टता पुरस्कारों की सूची में स्थान मिला। भारत की बढ़ती शतरंज शक्ति का ये प्रमाण है। आज भारत विश्वभर में शतरंज की अग्रणी शक्तियों में गिना जाता है। देश के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण के बल पर विश्व मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और करोड़ों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। विश्व शतरंज दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीवन की हर चुनौती का समाधान धैर्य, विवेक और सही रणनीति से खोजा जा सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश्व शतरंज दिवस पर आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर शुभकामनाएं और बधाई। आइए शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के स्वर में इस गीत के साथ कार्यक्रम की, जो लिया है हमने इम्तिहान फिल्म से। बहुत इंस्पायरिंग गीत है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया, जो हमें बताता है कि कैसे मुश्किलों में हमें आगे बढ़ना है।

जिन श्रोताओं के नाम इस गीत के साथ शामिल हो रहे हैं उनमें शामिल हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत और अर्जुन गवाणकर, टुक टुक भी इसमें शामिल हैं।

और अगला खत नागपुर से वैशाली शैलेश और एकांश सुमित कुमार ध्वनि और परी, इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति सत्य लक्ष्मी नारायण और भावखट से, इंदौर से ही नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी, दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, आर्यनगर कोहका भिवलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कलां से अमित जंघेल और के साथ ही शकुन आरुषि और ओशिका आदित्य और अंजलि, वीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। आप सभी की पसंद पर हमने सुना इम्तिहान फिल्म का किशोर कुमार के स्वर में ये गाना। कार्यक्रम का अगला गीत भी बहुत ही प्यारा सा है जिसे हमने लिया है फिल्म इकबाल से। दोस्तों हम आज विश्व शतरंज दिवस मना रहे हैं तो इस अवसर पर कुछ ऐसे इंस्पायरिंग गीत जो हमारे खिलाड़ियों को प्रेरित करें, सुखविंदर सिंह के स्वर में ये गीत हम सुनेंगे और इसके लिए संगीत तैयार खुद सुखविंदर सिंह ने किया है। सुभाष घई ने इस गीत को लिखा है और खेलने वाले जो खेलने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं ऐसे खिलाड़ियों को समर्पित है ये गाना, बहुत ही प्यारा सा। आइए सुनते हैं।

ये गीत आपने सुना, और इसके लिए आप सभी श्रोताओं के खत मिले हमें शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशु और रिधान खुराना, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरिया से, और हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया ने भी हमें ईमेल किया। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविका सिक्का, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर और गुरलाल तथा अविराज सिंह। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और एक और प्यारा सा गीत जो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में है, इस गीत को हमने लिया है फिल्म आशा से। तो आइए सुनते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर सा गीत है। आशाओं की बात हम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात हम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये हमें पॉजिटिव सिग्नल या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, इस तरह के गीत, इस तरह के बोल, इस तरह का संगीत और मधुर सुमधुर आवाज़ें हमें देती हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे आशा फिल्म से, और इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल हमें प्राप्त हुए। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। सतप्रकाश सनोठिया ने रोहिणी से हमें ईमेल किया। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता।

बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध ने हमें ईमेल किया। साथ ही भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जवाहरनगर दुर्ग से, आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। आप सभी की पसंद पर हमने ये गीत सुना और कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल पर। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार ही मेल भेजें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के नाम और उनके ईमेल शामिल कर पाएं आज के इस कार्यक्रम में। अगला गीत भी मोहम्मद रफ़ी के स्वर में और लता मंगेशकर के साथ हम सुनने जा रहे हैं। अपनापन फिल्म से इस गीत को लिया है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आशा फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे हैं, और इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के हमें ईमेल मिले, हमें ईमेल मिला सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम, रूबीना वसीम, आरिज नदीम और शमीम का, साथ में जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतिश संघई ने ईमेल किया, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल लिखा हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशुर, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह ने भी ईमेल किया, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान और लव दीवान, राधे, भाविका ढींगरा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद, साथ में बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी हमें ईमेल किया था इस गीत के लिए। कार्यक्रम का अगला गाना खूबसूरत सा हम सुनवा रहे हैं आपको, सावन को आने दो फिल्म से। मुझे लगता है कि देश भर में जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, बादलों को लेकर, बारिश को लेकर कुछ इसी तरह की भावनाएं आप सभी की होंगी, खासतौर पर किसानों की। लेकिन ये गीत सावन पर नहीं बल्कि बहुत ही मधुर बोली पर है, और यशुदास ने इस गीत को आवाज़ दी है, पूरन कुमार होश ने इस गीत को लिखा, राजकमल का संगीत।

वक्त फिल्म का ये गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में साहिर लुधियानवी का गीत रवि का संगीत। आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

फिल्म वक्त से आप सुन रहे हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर को साहिर का गीत, रवि का संगीत और ये गीत आप सभी की पसंद पर सुन रहे हैं। मधु किरण और अनीता वर्मा दिल्ली से ईमेल करती हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुकलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और शशि बाला जग्गी दुआ, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जीवयम, आदि अंश और भव्य जैन।

और दोस्तों साहिर के गीत और रवि के संगीत के बाद अब आपको ले चलते हैं गुलजार के गीत और एआर रहमान के संगीत की ओर। आवाज़ें ए हरिहरन और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम गुरु और ये बहुत ही प्यारा सा गीत। गुरु फिल्म के जितने भी गाने हैं बहुत ही सुंदर हैं, ये गीत भी बहुत ही प्यारा सा है और बहुत सारे श्रोताओं की पसंद पर ये गीत हम सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं।

अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्य, कलकत्ता से रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार, अन्विका और तनुश्री गुप्ता, झुमरी तलैया से अभय कुमार, शिवानी, प्रियंका सिन्हा, प्रोफेसर कुमारी प्रियंका सिन्हा और अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गोंडाने, कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह और जहां बेगम, मरियम और जैनब, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, भावरपुर बसना से श्रीमती चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की पसंद पर हम ये गीत सुन रहे हैं फिल्म गुरु। और इस गीत में आवाजें आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज में। गुलजार का गीत है, ए आर रहमान का खूबसूरत संगीत।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
2: कार्यक्रम में अगला गाना और कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म से, और इसमें आवाजें बहुत सारे गायक कलाकारों की हैं। उदित नारायण, साथ में अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, किशोरी, और ये गीत जावेद अख्तर ने लिखा है, ए आर रहमान का संगीत है। आइए सुनते हैं।

0: ये खूबसूरत संगीत और ये गीत जो इस समय के मौसम के लिए बहुत ही सूट करता है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही है और बादलों को देखकर मुझे लगता है कि किसानों की कुछ यही अपील होगी। किसान जो चाहते हैं कि बरसात की बूंदें पड़ें और खेतों में हरियाली और बेहतर हो। इसके साथ ही आज का आपकी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। संसद परिसर में श्री मोदी ने मॉनसून सत्र को उत्पादक बनाने पर बल दिया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पर श्री बिरला ने कहा कि विधायी और अन्य संसदीय कार्यों का सुचारू संचालन और अधिकतम कार्य निष्पादन सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने कहा कि इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कद बढ़ेगा। श्री बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर

0: using available flight options. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to become FIFA World Cup 2026 champions. Spain's substitute Ferran Torres scored in the 106th minute to give his team a 1-0 win over Argentina in the final at New York, New Jersey Stadium last night. The victory secured Spain's second men's FIFA World Cup title and their first since lifting the trophy in 2010. That is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप हमारे प्रसारण डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 पर। सुबह के 11:10 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम सबरस का, और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहली प्रस्तुति विलास पाटिल और साधना सरगम के स्वर में।

श्रोताओं, 11:10 आज का समय है हमारे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ का, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे सबरस का वो गीत जो आप सुन रहे थे। तो आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

कैलाश खेर के स्वर में अभी आपने सुना तेरी दीवानी एल्बम से ये गाना सबरस की अगली प्रस्तुति में। और कार्यक्रम का अगला और आखिरी जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है दलेर मेहंदी के एक एल्बम से। आइए सुनते हैं।

इस गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर, DRM 810 किलोहर्ट्स पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। साथ ही आप हमसे कनेक्टेड हैं हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पर AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी का, और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं अर्चना सिंह का गायन। आप अपना गायन प्रस्तुत कर रही हैं राग तोड़ी में।

0: सुरमंजरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अर्चना सिंह का राग तोड़ी में गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक के में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांधु के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मॉल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़,

घर आंगन। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ घर आंगन कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं आप। आपका स्वागत सत्कार करती हूं मैं, तो स्वीकारें मेरा यानी मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन रहे हैं आप। तो अब वक्त है हमारे सेगमेंट आज के प्रश्न का। तो आज आपको बताना है कि हाउस हेल्प यानी कि सेवा मित्र का अचानक से कहना कि आज वो नहीं आ पाएगी, इसके बाद की कहानी आप सभी की अपनी अपनी ही होगी। तो देरी किस बात की, लिख भेजिए अपने किस्से अपने जज्बात। हमारे पास हमारा मेल है fmgoldga@gmail.com। अचानक काम वाले के ना आने की खबर किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं होती है, है ना। और हम सब के जीवन की आप बीती में ये बात कभी ना कभी शुमार भी जरूर होती है ना दोस्तों। तो घर को घर बनाए रखना और कोई छोटा काम उसे समझना, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। घर को घर बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हम सभी जानते हैं। घर चलाना भी एक कला है और हम महिलाएं किसी भी इमरजेंसी से निपट सकती हैं। तो फिर इसके अनुभव आप सबके भी होंगे बहुतेरे। लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और इसी बात के साथ ये सुविचार आज का कि वक्त पड़ने पर ही किसी की कीमत जान पड़ती है, तो हंसते मुस्कुराते हुए अपने सेवा मित्रों के श्रम और सम्मान दोनों का ख्याल है जरूरी।

इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म से। और दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में, जिसमें हमने आज आपके लिए प्रश्न दिया है कि आपको बताना है अचानक से आपकी हाउस हेल्प या सेवा मित्र का ये कहना कि आज वो नहीं आ पाएगी। इससे जुड़े रोचक अनुभव आप सभी के अपने अपने होंगे, जिसे आपको बताना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। और देखिए, समय और जीवन हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, और आज का जो दिन है वो इतिहास की दो घटनाओं का साक्षी है। तो इस ऐतिहासिक घटना का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ दोस्तों, जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि आज 20 जुलाई है। ये दिन हम मनुष्यों की तार्किक और रणनीतिक बुद्धि को और उसके कौशल को बढ़ाने वाले खेल शतरंज को समर्पित है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में क्षय और मात के इस खेल को चतुरंग चतुरंजी के नाम से पुकारा जाता था, जिसे अब चेस के नाम से भी हम पुकारते हैं और जानते हैं। तो 20 जुलाई यानी आज ही के दिन पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना से इस खेल को पूरे विश्व में पहचान मिली थी, और 1959 में अपोलो 11 मिशन के जरिए मानव ने पहली बार, जानते हैं, आज ही के दिन चंद्रमा पे कदम रखा। और संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में घोषित किया। हर साल एक थीम के साथ इस दिन को मनाते हैं हम, और इस साल की थीम है दोस्तों, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। दोस्तों, ये दिवस हमें सीख दे जाते हैं कि जीवन में हर काम धैर्य के साथ और संयम के साथ सोच समझ कर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपने सपनों को इतना उन्मुक्त बनाना चाहिए कि चांद की सीमाएं भी छोटी हो जाएं।

और दोस्तों आप हमारे साथ हैं 100.1 मेगा हर्ट्स पर घर आंगन आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं आज की प्रश्नावली। तो आज की जो प्रश्न प्रश्न है आपके लिए वो है, आपको ये बताना है कि आपके सेवा मित्र का अचानक से ये कह देना कि वो आज नहीं आ पाएगी। इससे जुड़े रोचक अनुभव आपके जीवन में ज़रूर होंगे, क्योंकि देखिए घर एक ऐसा मसला है जो हम सभी की ज़िंदगी में उसे संभालना सबसे बड़ी खूबी होती है, और घर को संभालना, घर की नियमितताओं में चलना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। बाहर की सारे चीज़ों को एक साथ संतुलित रखते हुए घर को संभालना अपने आप में वो खूबी है जिसमें हमारे सेवा मित्र जो हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा दौर ज़रूर आता है कि कभी ऐसी स्थिति उनके साथ बने जब वो ना आ पाए और हमें अचानक से पता चले, तो फिर उस में हमें सारा काम फटाफट करना होता है, क्योंकि हमें अपनी बाकी दिनचर्या को भी पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों आगे भी बात करते रहेंगे आपके इन अनुभवों के लिए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं fmgoalgea@gmail.com पर। और अब बात करते हैं उनकी जिनसे मिलकर आप खुश होते हो, नहीं जो आपसे मिलकर खुश होते हैं। तो साथियों हमारी दुनिया का जो विस्तार है ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी की देन है, उसके कारण और बढ़ गया है। तो कभी आपने गौर किया है हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं इनमें कितनों का चेहरा हम खुश होते हुए देख पाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो हमें देखकर मुस्कुरा उठते हैं। भाई अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए तो हम समय निकाल ही लेते हैं दोस्तों जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जिन्हें हम अच्छे लगते हैं, जो हमें देखकर सचमुच खुश हो जाते हैं, उनके बारे में क्या? तो आप बताइए, सोचिए सोचिए ज़रा इस बारे में। भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है दोस्तों। यानी भीड़ बढ़ रही है लेकिन साथ सभी का कम हो रहा है। ऐसे में हमारी ज़रूरत से इतर कोई ऐसा नंबर भी तो हो सकता है ना जिसे हमारी कॉल का इंतज़ार रहता हो, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, दादा नानी, या शायद कोई पुराना दोस्त जिसकी फ्रेंड लिस्ट ज़्यादा बड़ी ना हो। इसीलिए हमारी मौजूदगी, जिनकी खुशी है उन्हें अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त देना ही असली उपहार होता है, क्योंकि महंगे तोहफे समय के साथ पुराने हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा याद रहता है।

जी हाँ, रात और दिन इस फिल्म से आप लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को सुन रहे थे। और देखिए, दिल की गिरहें खोलने का समय है, क्योंकि आपके लिए हमारा प्रश्न तैयार है। आपको बताना है कि हाउस हेल्प यानी सेवा मित्र का अचानक आपके लिए ये कह देना फ़ोन करके कि वो आज नहीं आ पाएगी, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपके क्या जज्बात होते हैं, क्या बीतती है आप पे, ये सब कुछ जानने के लिए हम उत्सुक हैं। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए घर आंगन, आपका अपना ये कार्यक्रम 100.1 पर।

दोस्तों, हम सभी फ़ोन के आदी हैं, है ना? और स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेस के प्रयोग से आज हमारी जो पीढ़ी है वो सचमुच स्मार्ट होती जा रही है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? भाई देखिए, इनके बगैर तो कोई काम नहीं होता, है ना? क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन उसका अगर स्मार्ट तरीके से हम प्रयोग करते हैं तभी वो पूरी तरह से स्मार्ट हो पाता है ना? क्योंकि वही तय करता है कि हमारी डिवाइस कितनी सुरक्षित और कितनी लंबी चलने वाली है। तो आज आपसे बात करते हुए आपको बता देते हैं कि स्मार्ट डिवाइस के स्मार्ट प्रयोग कैसे होते हैं। तो देखिए, लगभग 6 अरब लोग दुनिया में ऑनलाइन रहते हैं दोस्तों। ऐसे में सवाल फ़ोन रखने का और उसके डिवाइस को किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए इसका होता है। तो स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट रहने के लिए, हमारे हेल्थ को भी स्मार्ट रखें, इसलिए बहुत सी बातों को जानना हमें चाहिए। और डॉक्टर्स बताते हैं कि हर समय स्क्रीन के सामने रहने वाले लोग हर 20 मिनट बाद यदि 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट दूर देखने का अभ्यास करें तो उनकी आंखों पे जो जोर पड़ता है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अपने ऑनलाइन अकाउंट का मजबूत पासवर्ड हमेशा रखना चाहिए दोस्तों, जिनमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स ज़रूर शामिल करने चाहिए, और उनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर उन्हें अपडेट भी करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ आदतन डिवाइसेस के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज़रूरी होने पर ही इनका प्रयोग हमारे साथ हो, इनकी आदत हमें बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। साइबर स्वच्छता केंद्र भी दोस्तों सुरक्षित सॉफ्टवेयर सोच समझकर लिंक खोलने और डिवाइस को मालवेयर से बचाने की सलाह देते रहते हैं। इसीलिए फ़ोन ज़िंदगी को चलाने के बजाय ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं, और नोटिफिकेशन हमारे समय का मालिक ना बने। तकनीक हमें जोड़ने का माध्यम बने, ना कि हमें दूर करने का, क्योंकि कोई भी तकनीक सहायक बनकर लाभ दे सकती है, संचालक बनकर नहीं, है ना?

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना होगा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया किस लिए?
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई मुस्कुराई
1: इस खूबसूरत से गीत को सुनते हुए निश्चित रूप से आप सभी भी मुस्कुरा रहे होंगे दोस्तों। और ये गीत आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और साथियों हमने बात की थी स्मार्ट डिवाइस का स्मार्ट प्रयोग कैसे होना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात का हम सब भी बहुत ध्यान रखते होंगे, लेकिन बार बार याद दिलाने से ये हो जाता है कि हम उन बातों के लिए और ज़्यादा स्मार्टली प्रयोग करने के लिए ध्यान देने लगते हैं। और दोस्तों अब हम सुविधाओं की बात कर ही रहे हैं, तो सुविधाओं में हमें एक चीज़ और बहुत पसंद होती है कि हमें हर काम और हर चीज़ें करीने से मिलती रहें हर जगह, चाहे घर हो चाहे घर के बाहर। तो सुविधाओं से जुड़े अगर हम हैं तो सुविधाओं के साथ नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं नियमों की, लेकिन वो सुविधाएं तब असुविधा में बदल जाती हैं दोस्तों जब हम उन नियमों का पालन नहीं करते जिन सुविधाओं को हम भोगते हैं। क्योंकि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही बाहर अगर हम कूड़ा फेंक दें घर के बाहर, तो क्या हमारा घर सचमुच में साफ

दिखेगा, नहीं ना? यानी कि जैसे हम घर को बहुत करीने से रखते हैं, वैसे ही बाहर की जो सड़क है, यानी कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। जितना खुद की सफाई पर ध्यान हम देते हैं, उतना ही ध्यान अपने आसपास की सफाई पर रखने से हमारे आसपास का वातावरण भी सुंदर होता है, और यही कहलाता है हमारा सिविक सेंस। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता MOHUA ऐप डाउनलोड, उसका डाउनलोड साइट करके भी आप गंदगी, कचरा और सफाई से जुड़ी शिकायत वहां पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी गंदगी दिखती है तो आप बता सकते हैं, और पहले तो कोशिश हो कि आपके माध्यम से ही वो साफ हो जाए, आसपास की अगर जगह कचरा थोड़ा है, कम है तो। और अपने मोबाइल में आप ना, जब भी ऐसी स्थिति है जब आपको, आप बहुत सिंसियर नागरिक हैं, बहुत अवेयर हैं अपने आसपास की स्वच्छता के लिए, तो मोबाइल में आपके ये ऐप होना ही चाहिए। इसे लॉगिन करने के लिए आपको अपना फोटो, लोकेशन अपलोड करना होगा, और जो भी अगर कहीं समस्या दिखती है तो उस नागरिक समस्या की तस्वीर आपको उस ऐप में भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इस तरह आप एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। तो याद रखिए, आपको ऐप डाउनलोड करना है MOHUA। अगर आपके मोबाइल में अभी नहीं है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि आप स्वच्छता पसंद होंगे तो आगे भी आपका समाज सुंदर और स्वच्छ होगा। और सिविक सेंस सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि जानते हैं सड़कों पे जो लाल बत्ती होती है वहां पे भी काम करता है, क्योंकि वहां हमें अपने धैर्य को दिखाना होता है। सही लेन में रहना, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत और गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करना, सार्वजनिक स्थानों को उतना ही अपना समझना जितना कि हम अपने घर को समझते हैं, अनुशासित रहना, ये तमाम छोटी-छोटी बातें सभ्य समाज का हिस्सा हैं दोस्तों। क्योंकि नागरिक सहभागिता किसी भी शहर की खूबी बन सकती है तब जब स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर के लिए सरकार के साथ हम भी जिम्मेदार बने। भाई, अच्छी आदतों से सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारा परिवेश भी निखरता है। इसलिए सिविक सेंस संस्कारों से निभाए जाएं तो देश समृद्धि की ओर खुद ब खुद बढ़ता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ज़मीर फिल्म से इस खूबसूरत से गीत को सुनते हुए आप हमारे साथ पहुंच चुके हैं हमारे इस सफ़र में यहां तक दोस्तों, जहां हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रकृति की एक खूबसूरती की। क्योंकि अगर आप प्रकृति के निराले अंदाज़ को जीना देखना पसंद करते हैं, तो आज आपको भारत के एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो पानी के ऊपर बसा है, जहां जमीन स्थिर नहीं बल्कि तैरती है। और वो जगह है दोस्तों मणिपुर की लोकटक झील का केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। और ये यहाँ पर ही ना एकमात्र संघाई हिरणों का आवास स्थल है। ये जो संघाई हिरण है ये बहुत दुर्लभ हैं, और यहाँ पर हॉग डियर, जंगली सुअर और उदबिलाव और लगभग 425 प्रजाति के वन्य पशु और बहुत सारी अलग अलग तरह की तैरने वाली मछलियाँ पाई जाती हैं। साथ ही जलीय वनस्पतियाँ और 100 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं दोस्तों। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बनाया गया था, जो 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की खासियत क्या है पता है? यहाँ की फुमदी घास, जो मिट्टी और सड़ी वनस्पति से बने तैरते हुए टापुओं को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ना फुमदी मिट्टी, पौधे और सड़े हुए जैविक पदार्थों से बनी मोटी स्पंजी मिट्टी की परत होती है, उसे ही यहाँ के स्थानीय लोग फुमदी कहते हैं, जो पानी पर तैरती रहती है। और अकल्पनीय लगता है ना कि पानी के ऊपर तैरती घास, जमीन और उन पर चलते वन्य जीव, जानते हैं यहीं रहता है ये हिरण जिसके बारे में आपको बताया संघाई। और ये हिरण बहुत ही कम पाया जाता है पूरे विश्व में, जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्थान में मिलते हैं। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई ही है दोस्तों। और जब ये जमीन पर चलता है ना तो ये कहलाता है डांसिंग डियर, लेकिन जानते हैं ये एंडेंजर्ड श्रेणी में है। पूरी दुनिया में सिर्फ 200 से 250 संघाई ही बचे हैं। अगर आप मणिपुर के इस निराले द्वीप को देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का महीना यहाँ पे आने का सबसे बेहतरीन समय होता है। वैसे प्रकृति की इस रंग रंगीली कारीगरी को करीब से निहारना एक सुखद एहसास हो सकता है।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। और दोस्तों, आज बात एक ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व की करने जा रही हूँ आपके साथ, जिनके बारे में सुनकर आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। और चूंकि ये हरियाली मित्र हैं, और ये सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि अपने आसपास यानी जहाँ रहते हैं उस वातावरण में, वहाँ के परिवार में भी अपने इन हरियाली मित्रों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहानी है राजस्थान से बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाणी की, जिन्हें हरियाली का सिपाही कहा जाता है। उन्हें वृक्षों से बहुत प्रेम है, और उनके इस प्रेम ने ही ये साबित कर दिखाया है कि एक छोटा सा बीज भी बड़े बदलाव ला सकता है। दोस्तों, फेमेलियन फॉरेस्ट्री यानी पारिवारिक वानिकी की अनूठी पहल प्रोफेसर श्याम सुंदर ने की। उन्होंने वृक्षों को परिवार के सदस्य की तरह अपनाने का सुंदर संदेश समाज को दिया। 2003 से शुरू उनकी एकल यात्रा में आज लाखों लोग उनके अभियान से जुड़े हुए हैं, और रेगिस्तान की धरती पर उन्होंने हरियाली की उम्मीद को उगाया है। और इस कवायद में सबसे दिलचस्प उनके अभियान में ये है कि उनके यहाँ वृक्ष केवल लगाए नहीं जाते बल्कि जन्म, विवाह और पारिवारिक उत्सवों में उनकी अहम भूमिका होती है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके प्रयास को वर्ष 2020 में सरकार ने सराहा और पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र

0: ने भी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से उन्हें नवाजा। भाई जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, घटती हरियाली से पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। तो पर्यावरणविद श्याम सुंदर जयाणी जी का प्रकृति प्रेम आज भी ये संदेश दे रहा है कि वृक्ष वो कविताएं हैं जिन्हें धरती आकाश पर लिख रही है, जी रही है और फैला रही है।
1: ठीक है जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे।
3: सुनो सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

साथियों, फूलों के साथ हंसते मुस्कुराते आपकी जिंदगी खिलखिलाती रहे, महकती रहे, इसी संदेश के साथ घर आंगन कार्यक्रम में आज दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा को अनुमति। फिर मिलने के वादे के साथ यहीं छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगे और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, आकाश वाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो श्रोताओं, कभी कभी एक फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होती बल्कि उससे जुड़े लोगों की ज़िंदगी का रास्ता भी बदल देती है। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही फिल्म है और गाना सुन के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है जिस्म। साल 2003 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में अपने बोल्ड विषय, दमदार संगीत और अलग तरह की कहानी की वजह से खूब चर्चा बटोरी थी। लेकिन जिस्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कई लोगों के करियर का एक अहम मोड़ भी साबित हुई। तो अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे फिल्म जिस्म की, उससे जुड़े कुछ दिलचस्प कहानियों की और सुनेंगे इसके वो सदाबहार गीत जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने रिलीज़ के टाइम पर।

श्रोताओं, इस फिल्म का निर्देशन अमित सक्सेना ने किया था। निर्माण पूजा भट्ट और सुजीत कुमार सिंह द्वारा किया गया था। कहानी लिखी थी महेश भट्ट ने, डायलॉग लिखा था निरंजन अयंगर ने। और ये फिल्म 1981 की हॉलीवुड फिल्म बॉडी हीट से प्रेरित थी। तो चलिए आज की सफ़र की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के साथ। फिल्म जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के लिए भले ही नए थे, लेकिन उस वक्त मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी मशहूर थे। वहीं दूसरी तरफ बिपाशा बसु, दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि इस फिल्म को करने से बचें, क्योंकि उस समय इस तरह की फिल्म को काफ़ी बड़ा जोखिम माना जाता था। लेकिन बिपाशा ने दूसरों की राय से ज़्यादा कहानी और अपने किरदार पर भरोसा किया। बाद में उन्होंने माना भी कि जिस्म करना उनके करियर की सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। और जब फिल्म पर्दे पर आई तो जॉन और बिपाशा की जोड़ी ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया। क्या आप जानते हैं, फिल्म के क्रेडिट्स के मुताबिक जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु दोनों के लिए डबिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया था। जॉन के लिए विराज आधव और बिपाशा के लिए मोना शेट्टी ने अपनी आवाज़ दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस जॉन अब्राहम की पहली फिल्म में उनकी अपनी आवाज़ नहीं थी, वही आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल हो गए। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है जिस्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी एक वकील कबीर लाल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी में एक अमीर शादीशुदा महिला सोनिया खन्ना की एंट्री होती है। पहली मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों, भावनाओं और धोखे का ऐसा खेल शुरू होता है जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य सामने आता है, और यहीं से फिल्म दर्शकों को अंत तक अपने साथ बांधे रखती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसके गाने भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 9 साल बाद, साल 2012 में इसका सीक्वल जिस्म 2 भी बनाया गया। हालांकि पहली फिल्म जैसी सफलता तो उसे नहीं मिली, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म मानी गई। लेकिन जिस्म की कहानी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी, कैमरे के पीछे भी कुछ ऐसे ही किस्से बन रहे थे। फिल्म जिस्म की शूटिंग गोवा के अलग अलग खूबसूरत लोकेशन पर हुई, और इसी शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम और बिपाशा के एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धीरे धीरे रियल लाइफ भी में भी नज़र आने लगी। फिल्म ख़त्म हुई लेकिन उनकी दोस्ती एक लंबे रिलेशनशिप में बदल गई, जिसके बारे में उस दौर में हर मैगजीन और एंटरटेनमेंट पेज में चर्चा होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का सबसे बेहद और खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है जिस्म। अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था M.M. किरवानी ने, जिन्हें हम M.M. करीम के नाम से भी जानते हैं। वहीं गीतों को शब्द दिए थे नीलेश मिश्रा और सईद कादरी ने। गानों को अपनी आवाज़ से सजाया था श्रेया घोषाल, रूप कुमार राठौर, उदित नारायण, के और खुद M.M. करीम ने। उस दौर में इस साउंडट्रैक की लगभग 15 लाख कॉपियां बिकी थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए इसी खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और फिल्म के अगले गीत के साथ और संगीत, एक शानदार संगीत आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं इस फिल्म के अवार्ड्स के बारे में भी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में श्रेया घोषाल को उनके यादगार गीत जादू है नशा है के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सम्मान मिला। वहीं इस फिल्म ने कलाकारों के करियर को भी नई उड़ान दी। जॉन अब्राहम को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि बिपाशा बसु को उनके दमदार और बोल्ड अंदाज के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल फीमेल का पुरस्कार भी दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है जिस्म। और हमारे प्यारे श्रोताओं के मेल भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने लिखा है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS निर्मला और विशाल जी लिखते हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण के साथ साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहा है और साथ ही उम्दा जानकारी भी मिली, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस फिल्म के गाने और स्टोरी सुन रहे हैं पसंद आ रहा है, इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम और चंपा देवगन जी का। कोई भी गीत सुनवा दें, ये लिख रहे हैं ये एक ही फिल्म से है, इसलिए कोई भी गीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म से जिस्म के गीत ही आपको सुनने को मिलेंगे। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी जी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। फिल्म जिस्म के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्सा सुनाया, कहानी और नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही, हमें भी कार्यक्रम सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपार हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हैं और ये हैं, लिखते हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं सन 2003 की फिल्म जिस्म की। जी हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र छिपा जी, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और ये है शांति नगर सोनीपत से, और ये हैं स्वर्णजीत, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलार और विराज ठाकुरावाला से, और ये है आरजे साहब, प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है गुरनौर से आदिल कमर और अली मुजफ्फर अली। ये है, लिखते हैं, नमस्कार राखी बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन, फिल्म जिस्म की खूबसूरत जानकारी और गीत सुन रहे हैं। नौहरा राजस्थान से नरेंद्र सुथार और मनोज जी का, और ये हैं सुदर्शन रेडियो से आज की फिल्म जिस्म, बिल्कुल सही बात है। और ये है दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा और लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जी का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से मोहम्मद इसफाक और मोहम्मद असफाक, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा, आफरीन, कौसर और खतीजा जी का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, फिल्म के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और बात करते हैं फिल्म, ये जो फिल्म थी जॉन अब्राहम के लिए एक बड़ी शुरुआत साबित हुई, बिपाशा को एक नई पहचान दी और बॉलीवुड को ये दिखाया कि थ्रिलर, रोमांस और इमोशन का एक नया अंदाज में भी पेश किया जा सकता है। इस फिल्म की सबसे खास बात सिर्फ इसकी बोल्ड इमेज नहीं थी, बल्कि उसकी कहानी, उसका बैकग्राउंड स्कोर और उसके गाने भी थे, जिन्हें आज भी उतने ही मोहब्बत से गुनगुनाया जाता है। तो चलिए, कार्यक्रम का आखिरी गीत भी हम साथ साथ मोहब्बत से गुनगुनाते हैं।

हमारे कुछ श्रोताओं का मेल और आ गया है, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। आज आप बहुत अच्छी चर्चा करके कर रही हैं दीदी जी। राम राम। मॉडल टाउन से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप और जगमोहन और प्रतिभा किरण ठाकुर लिखते हैं। और ये हम आगे बढ़ते हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक, आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद और जौनपुर जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन, रोज़ी पर और विलिस, और ये ताज मोहम्मद अंसारी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। और ये हैं संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत, भारत और कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर से। और ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक है, इनका हमने पहले ही पढ़ लिया है। और ये है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत, राहुल और गुरशब्द सिंह। तो दोस्तों, हमारा हमारा जो ये सफ़र है, इसको यही हम विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे दोपहर के 3 बजे मैटनी मेलोडीज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्ते।

0: बाधाएं, अनेक संकट आए, उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है, ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम SIT ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को पेश की गई। अदालत आलिया आज इस मामले की समाअत करने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चीसी नाव में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांडो के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मालदोवा की पार्लियामेंट के सद इगोर गोरोसू से भी मुलाकात करेंगी और मालदोवा भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का भी ये पहला दौरा है। माहौलिया जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वाम मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन निस्टिल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलिया से मुतालिक मालियात जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरान और अमेरिका ने लगातार 90 दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने जुनूब मगरबी ईरान में हुरमुज कस्बे को निशाना बनाया, जबकि उर्दुन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के हमले होने की इत्तला मिली है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक मकामी एहलकार के हवाले से बताया है कि अमरीकी हमले की वजह से बूशहर सूबे में दश्ती काउंटी के इंतजामी मरकज हुरमुज के कुछ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। इत्तलात के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें पासदाराने इनकलाब की बहरी फोर्सेस से वाबस्ता फौजी ठिकाने शामिल हैं। उधर उर्दुन के सरकारी नशियाती इदारे ने कहा है कि मुल्क के फिदाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान से दागे गए 3 मिज़ाइलों को बीच में ही मार गिराया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामा राय के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में हुर्दबुर्द के जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा के अपने हमनसब के साथ वफ सतह की बातचीत करने वाली हैं और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Monsoon session of Parliament begins today. Both houses witness multiple adjournments amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi calls for productive monsoon session of Parliament, says it will lead to welfare of the nation. Supreme Court to hear pleas seeking probe into Ram Temple donations theft case today. President Draupadi Murmu holds delegation level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau. And IMD issues red alert warning for heavy to very heavy rainfall over parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The monsoon session of Parliament began today. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 p.m. amid opposition protest over the NET paper leak issue. When the House met after the third adjournment at 1 p.m., the opposition members continued with their protest over the NET issue. Presiding Officer Dilip Saikia tried to take up the scheduled business, but the opposition members did not pay heed to the Chair's advice

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों के भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण हो।

0: होता है जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जाँच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार, जो होता है सदाबहार सितारों के नाम। जी हाँ, आज जिस अभिनेता की हम बात करेंगे उन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्यार से जुबली कुमार कहती थी। एक ऐसा सितारा जिनके रोमांटिक अंदाज ने प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी। तो इस आधे घंटे के फिल्मी सफर में मेरे साथ यानी रैना तंवर के साथ जुड़े रहिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जल्दी से फोन उठाएं और हमें बताएं कि आज हम किस अभिनेता के दिलचस्प किस्सों, उनकी यादों और सदाबहार गीतों को लेकर आज के इस कार्यक्रम को खास बनाने चले हैं। तो आपको बस इतना करना है,

जी हाँ, आप भी सबको छोड़कर हमारे पास आ जाइए। हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और जिन्होंने हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब दिया है वो हैं दिग दर्शन और कविता गौर जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज के फेवरेट श्रोता का खिताब पाने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये कार्यक्रम आज समर्पित है राजेंद्र कुमार जी को। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और इनका जो जन्म है आज ही के दिन, यानी कि 20 जुलाई आज ही की तारीख पर, यानी कि आज के दिन सन 1929 को सियालकोट, जो कि आज पाकिस्तान में है, हुआ करता है। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष किया। और हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज आए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सही जवाब जिन्होंने दिया था हमने बता दिया है, लेकिन उनके साथ साथ स्वर्ण सिंह जी ने हमें मैसेज किया, नितेश देवांगन जी ने हमें मैसेज किया है, और नितेश कुमार देवांगन जी, और इस तरीके से स्वर्ण दलदीत, राजदीप गुरनूर, गुरनाल अविराज जी ने हमें मैसेज किया, और नितेश जी ने, दुर्गा प्रसाद पराग पुना और कृष्णा देवांगन जी ने, और फिर हमें तनुजा जी ने किया मैसेज, शांत लखनलाल, सावित्री बाई, नीतीश कुमार, तनुजा जी, और इसी तरह से यासीन, मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन बाबू, मिफ्रा बेबी, सादिया, और इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए, मैसेज करते रहिए। और सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा।

जी हाँ, किस किस के होश उड़ गए हैं, अभी भी पुराने दिन याद आ जाते हैं ना ये गाने सुनकर। अपना वो दिन जब हम भी किसी को याद किया करते थे, खत लिखा करते थे। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार साहब शुरू से ही गांव और अपने गांव की उस मिट्टी से जुड़े एक सादगी भरे इंसान थे। बचपन से ही उन्हें कला से प्रेम। जहाँ वो गांव के बच्चे गुल्ली डंडा चोर सिपाही खेला करते थे, वो ही वो राजेंद्र कुमार जी थे जो अपने गाँव के स्कूल में स्टेज पर कविताएं और किस्से नाटक कर लोगों को प्रभावित करते थे। ये अदाकारी देखकर गांव के सभी लोग कहते थे कि ये लड़का एक दिन तो कुछ करके दिखाएगा। और उनकी माँ का भी यही दृढ़ विश्वास था और आशीर्वाद था जो आज उनको हमारे बीच इस बखूबी नगीने की तरह हम प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। और हमारे पास इसी तरीके से बहुत बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजते हैं, अपने मैसेज करके हमें एक हौसला अफजाई करते हैं। तो ये हमारे पास अमर रमेश जी का भी मैसेज आया है जिन्होंने टेलर मास्टर किशन लाल खत्री, अमर रमेश कुमार, जफर सादिक और शंकर गुल, इनको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। गुरमीत सिंह जी ने हमें साउथ एक्सटेंशन से मैसेज करके भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमें तुलसी मस्कीन जी ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमें मैसेज किया है और सबके जवाब एकदम सही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धर्मेंद्र छिप्पा जी ने भी हमें मैसेज किया है, कपिल और पूजा परिहार जी ने, और उसी तरह से निसार अली और नौशाद सलमानी तेलीवाना उत्तराखंड से, सुदर्शन मुखी जी, अनीता सिमरन हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज कर रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, गुड आफ्टरनून। और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए। हरजिंदर सिंह छिंदा जी ने हमें मैसेज किया है, जसवीर जस्सी सीता गीता गांव नथाना पंजाब से, क्या बात है। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम में और बताइए कि आपको और क्या क्या हमें हम सुधार कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम का मजा लेते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले इस नगमे के साथ।

जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल पर रैना तंवर के साथ आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज है हमारे कलाकार राजेंद्र कुमार की यादों के साथ। जी हाँ, राजेंद्र कुमार जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ मदर इंडिया से, लेकिन असली स्टार्डम मिला 1960 के दशक में, जब उनकी एक के बाद एक फिल्में लगातार सिल्वर जुल्मी बनाने लगी। जी हाँ, लगातार सिनेमा घरों में 25 हफ्तों तक चलती थी, तभी तो सिल्वर जुबली के नाम से ये जाने जाने लगे। हालांकि उनका असली नाम राजेंद्र कुमार तुली था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करे सलाम, बस यही उनके जीवन की असली है पहचान। और हम गुरमीत जी से कहना चाहेंगे कि हमने आपका मैसेज शामिल किया है, तो आप हमारा ये मेरा प्रेम पत्र, मतलब ये आपके इतने अच्छे जो पत्र हम पढ़ रहे हैं, आपका हम मैसेज ले चुके हैं, तो इसलिए हम नाराज़ बिल्कुल ना होएं। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तुलसी मस्कीन जी का भी आया है और आर कुमार जी का मैसेज आया है, वर्डिंग खेड़ा पंजाब, मिंटू पिंकी सभी, आरती अरोड़ा और धर्मेंद्र छिपा जी का हम बता चुके हैं। उसी तरीके से हमारे पास मसरूर हसन जी का सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम, अदीम परिवार वाले सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप मक्कर जी ने हमें, ज्योति मक्कर जी, मन्नत मक्कर, भारत और शाहनी सभी ने हमें मैसेज किया है। और इस तरीके से हमें आप अपना प्रेम भेजते रहें, हम आपका जितना समय होगा, जितना हमसे होगा, हम सभी के मैसेज शामिल करेंगे, तो नाराज़ बिल्कुल मत होइएगा। अगला नगमा, हम बढ़ते हैं इस अगले नगमे की ओर। अभी आपने जो सुना था वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ संगम फिल्म का ये मेरा प्रेम पत्र था, और अगला ये जो नगमा है वो क्या है, आप सुनिए रफ़ी जी की आवाज़ का।

देखा जी, पत्र भी दे दिया, अब इजहार हाल भी कर दिया। कितने सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि पिछले कार्यक्रम में मैंने जो पेश किया था वो था कुमार गौरव जी के बारे में, और आज मौका मिला है उन्हीं के पिता, और आज मज़ा आ रहा है कार्यक्रम में जुड़े रहने का। और पिछली जो याद थी, जो गीत थे उनको सुनकर एक श्रोता ने एक मैसेज किया था जिन्हें मैं शामिल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं करना चाहूँगी कि उन्होंने गीत सुनकर अपनी संवेदनाएँ, अपने दिल की भावनाएँ हम तक पहुँचाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक श्रोता थे फारूक अली खान जी, जिन्होंने लिखा ये गीत सुनकर उन्हें बेटे की याद आ गई जो विदेश में है। देखिए, जो विदेश में है अपने बच्चे उनके दूर हैं, और उनसे मैं यही कहूँगी कि अपने पिता को रोज़ मैसेज करें, उनसे बात करें, उनका दिल रखें। और आजकल तो बहुत कुछ आसान है, हम बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आसानी से। वहीं अनिल मोहन जी ने भी हमें एक फिल्म से जुड़ी एक याद को बताया कि उस समय कैसेट का ज़माना था और उनकी कज़न की शादी में उन्होंने सारे गीत वही उसी फिल्म के उसी कलाकार के बजाए थे, और उन्होंने अपने ऊपर ये पूरी शादी का समारोह बस उसी फिल्म के गीत प्ले कर कर किया था। क्या बात है। और हमारे पास इसी तरह के सुधांकर जाधव जी का मैसेज आया, सभी के नाम हम नहीं ले पाते हैं तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। स्वर्ण सिंह जी ने हमें भेजा है मैसेज, और इसी तरह इब्राहिम सिंह जी ने हमें भेजा है, संजय ढिंगिया जी ने हमें भेजा है मैसेज, गुरमीत सिंह जी ने हमें मैसेज कर दिया है, अनिल मोहन जी ने बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद कमर जी ने हमें मैसेज किया है, और मस्कीन दादा जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से तुलसी मस्कीन जी ने हमें मैसेज किए हैं, इशाक मोहम्मद जी ने छत्तीसगढ़ से हमें, मोहम्मद इशाक जी ने मैसेज किया है, और पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से हमारे पास महाराष्ट्र से इन्होंने मैसेज किया है, नारायण सोपान, आशीष, निर्मला, विशाल, पीएस नाहस्कर, और प्रकाश वर्मा जी का, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी वर्मा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से हाँ, हम सभी को लेना चाह रहे हैं एक ही कलाकार के इसमें, मोहम्मद कमर जी ने हमें मैसेज किया, और वो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिएगा। स्वर्ण सिंह जी ने भी हमें मैसेज किया है, रोजी डे कास्ट्रो ने हमें मैसेज किया है, पर्ल और विलिस और जॉन हमें मैसेज कर रहे हैं, जॉन साहब भी, और इस तरीके से उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी का मैसेज लें तो इसलिए बुरा ना माने। और हम अब बात कर रहे हैं राजेंद्र साहब जी की, जो कि उन्होंने कहते हैं ना कि भारतीय सिनेमा में एक बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री पर सम्मानित किया गया था। कैंसर बीमारी शिकार होने के कारण 12 जुलाई 1999 को इस महान अभिनेता का निधन हो गया। 1950 में फिल्म जोगन से एक छोटी सी भूमिका से शुरुआत करने वाले उस महान अभिनेता ने आज बड़े पर्दे पर जो कर दिखाया वो हम सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ दी, उनको हम शत शत नमन करते हैं। तो सुनते हैं ये वाला नगमा।

तो भाई मुझे यानी राणा तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और नई अभिनेता की यादों के साथ। बस याद रखिएगा, कुछ करो ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर, और समय की स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय होने चला है 3:03। और अब हम सुनेंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। आज हम बात करते हैं नशे की। नशे के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। नशा बहुत सी समस्याओं का जड़ है, ये तो हम सब जानते हैं, पर फिर भी आज युवा पीढ़ी नशे में फंसी हुई है। श्रोताओं, आज हम आपको एक नाटक के द्वारा सुनाते हैं कि ऐसे परिवार के बारे में जो नशे के कारण बर्बाद हो गया था।

0: सुशील है।
1: सुनो जी, हमारा बेटा बहुत सुंदर है, तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए।
0: हाँ हाँ, लड़की बहुत सुंदर है।
1: ये ठीक है, एक बार राजू से भी पूछ लेते हैं।
0: अरे जब राजू श्याम को घर आ जाएगा तुम उससे बात कर लेना।
1: अरे आ गया बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो।
2: ठीक है माँ।
1: राजू बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी।
2: कहो माँ, क्या कहना है?
1: बेटा आज तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है और सुशील भी। तुम कहो तो हम लड़की वालों से बात करें।
2: जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ, आप वैसा ही करें। आप मेरा अच्छा बुरा मुझसे अधिक जानती हो, ठीक है?
1: ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे।
0: राजू की माँ, क्या तुमने कल राजू से बात की थी क्या?
1: हाँ जी, मैंने शाम को राजू से बात की थी, वो शादी के लिए तैयार है। अब आप लड़की वालों से बात कर लीजिए।
0: ठीक है, फिर आज मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ।
3: फिर राजू के पिताजी लड़की वालों के घर चले जाते हैं और राजू के रिश्ते की बात करते हैं। वहीं लड़की के पिताजी राजू के पिताजी से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। राजू के पिताजी बताते हैं कि राजू मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अच्छा कमाता है। फिर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और राजू और लता का रिश्ता पक्का करते हैं। फिर कुछ समय पश्चात राजू और लता की शादी हो जाती है। लता सुबह उठकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और रसोई में काम करने चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और लता भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। कुछ समय के पश्चात लता के ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। लता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधे पर आ गई और राजू परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि वह सब कैसे संभालेगा।

0: क्या बताऊं यार, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूं। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं।
1: दोस्तों से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
0: चलो ठीक है, शाम को चलते हैं।
2: माँ जी, वो अभी घर नहीं आए, काफी देर हो गई है। हर रोज तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं।
3: बहू, फोन लगा कर तो पूछ, वो कहाँ रह गया है?
2: जी माँ जी।
0: हेलो।
2: हेलो जी, आप अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है। माँ जी भी पूछ रही हैं।
0: लता, माँ को कह दो चिंता ना करे, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ।
2: ठीक है जी।
3: बहू, क्या कहा राजू ने, कहाँ पर है वो?
2: माँ जी, वो अपने दोस्तों के साथ हैं, जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए आप खाना खा लीजिए।
4: फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लता दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि राजू नशे की हालत में खड़ा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। यह देखकर लता को बहुत दुख हुआ। वो राजू को चुपके से उसके कमरे में ले गई। यदि माँ जी को इसके नशे के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा।
2: सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल आप नशे की हालत में घर आए, अगर माँ जी देख लेते तो उन्हें कितना बुरा लगता। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
0: चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बकबक करने

0: रही है मुझे? क्यों मार रहे हो?
1: अभी बताता हूँ तुझे।
0: अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? क्यों मार रहा है बहू को? छोड़ इसे, मत मार। क्या हुआ ये तो बता बेटा, क्या किया है इसने?
1: अरे माँ आप बीच में मत बोलिए, आपने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो ये कोई काम ढंग से नहीं करती ना। आज नहीं छोड़ता तुझे।
0: तू छोड़ इसे और बाहर जा। बहू चुप हो जा, रो मत, मैं समझाऊंगी उसे, अभी वो गुस्से में है ना।
2: माँ जी मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि कुछ पूछूं तो मुझे बताते भी नहीं, क्या हुआ है, इतना नाराज क्यों है?
0: कोई बात नहीं बहू, अभी वो गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
3: धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ महीने बाद लता ने एक बेटी को जन्म दिया। लता और उसकी सास बहुत खुश थी, वहीं राजू शराब के नशे में अधिक डूबता चला गया। वह हर रोज शाम को नशे के हालत में घर आता और घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट करता। राजू ना तो लता के बारे में सोचता और ना अपनी बेटी के बारे में, बस सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया, घर के हालात बहुत ही खराब हो गए।
0: बेटा राजू तुमने ये क्या हाल बना लिया है, तुझे ना खुद का होश है और ना ही बच्चे के खाने पीने का, घर में कुछ सामान भी नहीं है।
2: माँ जी आप किसे कह रही हैं? ये तो शराब के नशे में पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने पड़ोस की बहन से बात कर ली है, कल से मैं मजदूरी करने के लिए जाया करूँगी। आप अपने और अपने पोती का ध्यान रखें।
1: अरे ओ महारानी कहाँ मर गई है?
0: अरे बेटा क्यों चिल्ला रहा है, बहू घर पर नहीं है।
1: घर पर नहीं है? अरे कहाँ मर गई वो?
0: वो आज खेत में मजदूरी करने गई है, शाम को ही घर आएगी।
1: मजदूरी करने? अरे माँ वो मजदूरी करने नहीं, मेरी बेइज्जती करने गई है। वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मैं काम नहीं करता, बस वही काम करती है। आने दो उसे, आज शाम को मैं बताता हूँ उसे।
2: लो माँ जी आज जो मजदूरी मिली है मैं उससे घर का राशन लेके आई हूँ।
0: ठीक है बहू, अच्छा किया, रसोई में रख दो।
1: आ गई कुल्टा, किस यार से मिलने गई थी बता मुझे।
2: ये क्या कह रहे हैं आप, आप होश में तो हैं? कुछ भी कह रहे हो, छोड़िए मुझे।
1: चल निकल मेरे घर से, आज मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चल निकल।
0: अरे बेटा छोड़ दे बहू को, क्यों मार रहा है, छोड़ दे।
1: माँ तू बीच से हट जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चल निकल यहाँ से, मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहेगी, समझी।
3: फिर लता अपने माता पिता के घर आ जाती और वहीं रहने लगती। लता अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने सिलाई करना सीख लिया और वह अपने गांव में सिलाई का काम करने लगी और अपने माता पिता की मदद करने लगी। लेकिन लता हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी और उदास हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू शराब के नशे में पड़ा रहता था, ना ही उसे अपना होश था और ना ही अपनी माँ और बेटी का। उसकी नशे की लत के कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन राजू को उसके पुराने दोस्त ने, जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, नशे के हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और उसे उठाकर घर ले गया।
4: नमस्ते आंटी जी, मैं राजू का दोस्त हूँ, हम दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे।
0: नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, ये कहाँ मिला तुझे, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ बेटा।
4: आंटी जी मैं रास्ते से आ रहा था, राजू मुझे वहीं मिला। क्या हुआ इसे, इसकी ये हालत कैसी हुई और भाभी जी कहाँ हैं?
0: बेटा क्या बताओ, राजू के पिताजी के जाने के बाद कुछ दिनों बाद राजू ने शराब पीना शुरू कर दी और घर में रोज लड़ाई झगड़े करने लगा, बहू के साथ भी बहुत मारपीट करने लगा और उसे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं बेटा, ये छोटी सी बच्ची भी बिना माँ के पूरा दिन रोती रहती है।
4: आप चिंता ना करें आंटी, मैं राजू से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा।

0: अरे श्याम यार, तू यहाँ कैसे और कब आया? और सब ठीक है ना?
1: हाँ यार राजू, मैं तो ठीक हूँ, पर तूने ये क्या हाल बना रखा है? तू शराब पीने लगा? तूने इस शराब के कारण अपनी जिंदगी खराब कर ली है और साथ में अपने परिवार की भी। तेरे इस नशे के कारण तेरा पूरा परिवार परेशान है। पहले तेरा परिवार कितना खुश था, तूने शराब के कारण भाभी जी को भी घर से बाहर निकाल दिया है और तेरी बेटी को बिना माँ के कर दिया। यार राजू, तू अपने नहीं कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच।
0: तू ठीक कह रहा है यार, जब से मैं शराब पीने लगा हूँ ना, मेरे परेशानियाँ और बढ़ने लगी है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लता के साथ भी मैंने बहुत बुरा किया, वो भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया यार।
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा अगर तू चाहे तो।
0: वो कैसे?
1: पहले तो तू इस शराब को छोड़ दे और भाभी को घर ले आ और उससे माफ़ी मांग, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। और कल मैं तेरे लिए कंपनी में बात करूँगा कि तुम्हें वो काम पर रख ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
0: ठीक है यार श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कल ही तेरी भाभी के घर जाकर उससे माफ़ी भी मांगूंगा और उसे अपने साथ ले आऊँगा। माँ तुम भी मुझे माफ़ कर दो।
2: फिर राजू अगले दिन लता के घर जाता है और माफ़ी मांग और लता को घर आने के लिए कहता है। लता भी राजू को माफ़ करती है और उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। लता को देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लता अपनी सास के पांव छूती है और अपनी बेटी के गले लगती है। कुछ दिनों बाद राजू को फिर से कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह काम करने लगता है। वहीं लता भी सिलाई का काम करती है और दोनों मिलकर कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। यह आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 3:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़। और आज के मैटिनी मेलोडीज़ कार्यक्रम में

जी हाँ श्रोताओं, मैटनी मेलोडीज में इस वक्त आप सुन रहे थे गीत फिल्म असली नकली से, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने। इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने, और बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। और ये जो गीत था वो फिल्माया गया था देवानंद और साधना जी पे। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये जो सॉन्ग है ये है फिल्म लोफर का। इसे दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी और इसके बोल लिखे थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। इस सदाबहार गाने को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने और फिल्माया गया था धर्मेंद्र और मुमताज़ भी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी।

श्रोताओं, अभी जो आप गीत सुन रहे हैं वो गीत है किशोर कुमार की मखमली आवाज़ में। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल और इस गीत को बेहतरीन संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में किस कदर आगे है। तो आइए हालिया दिनों में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर एक नज़र डालते हैं। स्मार्ट ड्रेसिंग जख्म का दर्द कम करने और जल्द भरने में मददगार। सामीन, मरकजी आला तालीमी इदारे NIT रावरकेला के महक्कीन ने जख्मों के इलाज के लिए एक जदीद स्मार्ट ड्रेसिंग तैयार की है, जो न सिर्फ जख्म में इन्फेक्शन के खतरे को कम करती है, बल्कि ड्रेसिंग तब्दील करते वक्त होने वाले दर्द और तकलीफ में भी नुमाया कमी लाती है। महक्कीन के मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी जख्म को तेज़ी से भरने में मददगार साबित हो सकती है और मुस्तकबिल में जदीद तिबी इलाज के शोबे में अहम पेशरफ्त की बुनियाद बन सकती है। NIT रावरकेला के शोबे हयातियाती टेक्नोलॉजी और तिबी इंजीनियरिंग के मुआविन प्रोफेसर प्रसून कुमार ने बताया कि जिन मरीजों के जख्मों की बार बार ड्रेसिंग करना पड़ती है, उन्हें हर मरतबा शदीद तकलीफ और बेआरामी का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक ये नई स्मार्ट ड्रेसिंग इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है, ताकि इलाज को ज़्यादा आरामदेह और मौसर बनाया जा सके। क्या मस्नूई ज़हानत का बुलबुला फट गया है? क्या हिंदुस्तान को अमरीकी मार्केट में मंदी का फ़ायदा होगा? सामीन, पिछले 3 सालों से दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकार AI यानी मस्नू

से बचाने के लिए एक खसूसी खलाई मिशन शुरू किया है। इस मिशन का मकसद दूरबीन को मौजूदा निचले मदार से ज़्यादा बुलंद मदार में पहुँचाना है, ताकि वो मजीद कई बरस तक साइंसी तहकीक का हिस्सा बनी रहे। अगर ये मनसूबा कामयाब रहा तो खलाई तारीख में पहली मरतबा किसी पुरानी खलाई दूरबीन को ज़्यादा बुलंद मदार में मुंतकिल करके उसकी अमली मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। नासा के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ स्विफ्ट खलाई दूरबीन का मदार मुसलसल कम होता जा रहा है। अगर इसकी बुलंदी में इजाफा ना किया गया तो इम्कान है कि रवां साल के आखिर तक ये ज़मीन के माहौल में दाखिल होकर जल जाएगी। इसी खतरे के पेश नज़र इदारे ने इस खसूसी मिशन का आगाज़ किया है, ताकि दूरबीन को महफूज रखते हुए इसकी खदमात मजीद जारी रखी जा सकें। समीन, साइंसी खबरों का ये प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इससे कबल आइए जगजीत सिंह की आवाज़ में समाअत करते हैं ये खूबसूरत

और फिर 16 मीटर दूर सीधी हालत में कामयाबी से जमीन पर उतर गया। ये पहला मौका है कि जापानी खलाई एजेंसी किसी रॉकेट को कामयाबी से लॉन्च करने के बाद बहिफाजत वापस उतारने में कामयाब हुई है। जैक्सा का कहना है कि अगले मरहले में RV-X रॉकेट को तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी तक भेजने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके बाद मुस्तकबिल में इसे मदार परवाजों के लिए इस्तेमाल करने की राह हमवार होगी। ये कामयाब आजमाइश ऐसे वक्त में हुई है जब एक रोज़ कबल चीन ने भी समंदर में नस्ब जाल नुमा निज़ाम के ज़रिए दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की कामयाब लैंडिंग का मुजाहरा किया था।

0: समीन, अभी आप मुन्नी बेगम की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल समाप्त कर रहे थे, और आइए अब जनाब शमीम अख्तर से उनकी तकरीर सुनते हैं। उन्वान है, मेडिकल साइंस में मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल।
1: अगर आप बीमार हो जाते हैं तो अब आप खुद को अस्पतालों की लंबी कतारों में खड़ा होने से बचा सकते हैं। गूगल ने खांसने और छींकने से बीमारियों का पता लगाने वाला एक ऐसा AI टूल तैयार किया है जिसके सामने खांसकर आप सेकंडों में अपनी

0: सामीन, अभी आप सुन रहे थे साइंसी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम साइंस की दुनिया। तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यानी सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेज़ी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सदन में नीट मुद्दे पर 6 बार स्थगन हुआ। निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। बाद में सदन ने अपने पूर्व सदस्यों बलबीर के पुंज, स्वपन साधन बोस, रंगसाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका अंतर सत्र के दौरान निधन हो गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, हालांकि हंगामे के कार्य पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर अपना विरोध फिर से जारी रखा। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदन को दोपहर बाद 3 बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने निर्धारित कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह नहीं मानी और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि संसद परिसर और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने की संभावना है। लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनका किशिनौ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session, Prime Minister Narendra Modi today expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying that both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है।

9590638, थाना कासना, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना एक्सप्रेसवे नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। गुमशुदा व्यक्ति का नाम मंजू, महिला, आयु 28 वर्ष, कद 5 फुट। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना एक्सप्रेसवे नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। एक संपर्क नंबर भी आप लिख सकते हैं, 9457525225। दूसरा नंबर भी है 8595902533। अगली सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली खुबरू खुपुरा, जनपद गौतम बुद्ध नगर। खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनिया शर्मा, पुत्री राकेश शर्मा, आयु 18 वर्ष, महिला, कद 5 फुट 3 इंच। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना खुपुरा और जनपद कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। थाना सेक्टर 10, कमिश्नरेट गुरुग्राम। खोए हुए व्यक्ति का नाम है प्रिंस कुमार, पुत्र प्रशांत कुमार, आयु 17 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच। बिना बताए घर से कहीं चले गए हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, कृपया संपर्क करें थाना सेक्टर 10, कमिश्नरेट गुरुग्राम। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना गीता कॉलोनी, कमिश्नरेट दिल्ली। गुमशुदा व्यक्ति का नाम खुशी कुमारी, पुत्री साहब सिंह, आयु 16 वर्ष 5 माह, महिला, कद 5 फुट। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना गीता कॉलोनी, कमिश्नरेट दिल्ली। आखिरी सूचना प्राप्त हुई है थाना फेस 2, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। खोए हुए व्यक्ति का नाम लक्ष्मी, पुत्री दुर्गा शाह, आयु 19 वर्ष, स्त्री, कद 5 फुट। घर से कंपनी जाने की बोल कर गई थी और वापस लौटी नहीं। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना फेस 2, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम युववाणी।

0: लफ्ज़ों की गहराइयों में कुछ राज लाए हैं, खामोशियों को चीरती हुई आवाज़ लाए हैं। तैयार हो जाइए इस सफ़र के लिए, हम आज एक नया आगाज़ लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य।
1: और मैं हूं अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? तो ट्रैफिक की टेंशन, मेट्रो की भागदौड़ और शहर की रफ्तार के बीच थोड़ा थम जाइए और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं 4:15 और आप सुन रहे हैं युवाने, आज के युवा की आवाज आकाशवाणी से।
0: और अगले 45 मिनट तक हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो गुजरेगा बेहद दिलचस्प बातों के साथ। टुडेज टॉक में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल पर, मन से माइक्रोफोन में आज बात करेंगे जिम एटिकेट्स की।
1: फिर वीकली सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी आजकल सबकी नजर है, वो है हेल्थ। उसके बाद

0: क्विक बज में जानेंगे दुनिया भर में चल रहे कुछ क्विक अपडेट्स
1: और आखिर में टुडे इन हिस्ट्री में जानेंगे आज के दिन की इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।
0: मगर श्रोताओं, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम आपके लिए पेश करते हैं आज के शो का एक पहला गीत। फिल्म पैडमैन से बोल है आज से तेरी, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: फिर से स्वागत है आपका युववाणी पर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, आज की बात। तो श्रोताओं, आज है मंडे, मंडे यानी मोटिवेशनल डे। अभिषेक, भला हेल्थ से ज़्यादा मोटिवेशनल और क्या हो सकता है?
1: बिल्कुल आदित्य, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ पल अपने हेल्थ के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य के लिए।
0: बिल्कुल श्रोताओं, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहिए।
1: हम सबको अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए।
0: सही कहा अभिषेक, हमें कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी हमारे लाइफस्टाइल में हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, योगा हो, जुम्बा हो, जॉगिंग हो या फिर कोई भी और एक स्पोर्ट।
1: आजकल हम सभी खान पान में बिल्कुल भी ढीले पड़ते जा रहे हैं, और हम आजकल कितना बाहर का खाना खाने लगे हैं। पैक्ड फूड, जंक फूड, ये सब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
0: हाँ, इससे हमारे लेवर पर असर पड़ता है। ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, ना जाने कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
1: देखो, मानो ना मानो, इन सब का समाधान हमारे घर के किचन में ही है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक हेल्दी बैलेंस लाइफ के लिए घर का खाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स की नीड्स को पूरा करता है। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: आप सुन रहे हैं युववाणी और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा से, जिन्होंने जिम एटिकेट्स की जानकारी दी है, जिनसे बात की है हमारी साथी साक्षी ने।
1: साथियों, हम देखते हैं आजकल हम में से बहुत से लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाना एक अच्छी हैबिट हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आजकल जिम रिलेटेड इंजरीज भी बढ़ती जा रही हैं। इसी विषय पर विस्तार से समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, जो कि एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद साक्षी जी।
1: तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या जिम जाना वाकई जरूरी है या फिर हेल्दी खाना खा के हम फिट रह सकते हैं?
2: दोनों चीजें जरूरी है। आपको जिम जाने के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जा सकते, तो वो अपना घर पे ही लाइट वर्कआउट करके भी अपना फिटनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं।
1: जिम इंजरीज के मेन कॉज क्या होते हैं?
2: जिम इंजरीज के सबसे मेन जो कॉज है, उनमें पहला कारण है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब आप बहुत ज़्यादा वजन बहुत जल्दी आप उठा रहे हो, जिसको हम ईगो लिफ्टिंग भी बोलते हैं। दूसरा कारण है आपका पोस्चर और आपका प्रोग्रेशन आपका सही नहीं है, आप सही तकनीक के साथ आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और तीसरा कारण है ओवर ट्रेनिंग, आप किसी मसल को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो विदाउट उसको रेस्ट दिए बिना।
1: और हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, इंजरी है? आमतौर पर हम इसको इग्नोर कर देते कि हाँ ठीक है, चोट लगा है, ठीक हो जाएगा।
2: हाँ, यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि ये आम पेन है, अपने आप चला जाएगा, लेकिन बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि आपको कहाँ रुकना है। जैसे आपको अगर लगातार पेन हो रहा है, या आपको शार्प शूटिंग पेन हो, या आपको ऐसा लगे कि टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है मसल में, या जोड़ में दर्द बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे साइन है जहाँ पे बॉडी आपको बताती है कि ये एक इंजरी है, ये नॉर्मल पेन नहीं है।
1: ऑल्सो, क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा सके कि वेदर ही और शी वो जिम जाने के लिए फिट है या नहीं?
2: क्राइटेरिया है जिसको हम पार क्यू बोलते हैं, यानी फिजिकल असेसमेंट रेडीनेस क्वेश्चन है। इसमें हम जो पर्सन है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो जिम के लिए कितना फिट है या नहीं है। इसमें हम ये देखते हैं कि उसको कोई प्रीवियस इंजरी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है या नहीं है, या कोई और मेडिकल हिस्ट्री उसको है या नहीं है, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या बीपी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वर्कआउट प्लान करते हैं, या जो भी उनका ट्रेनर होगा वो उसके अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्लान करता है।
1: डॉक्टर राजेश, आप मुझे एक और बात बताइए कि इसमें डाइट का क्या रोल होता है? जैसे बहुत लोग जिम जाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो डाइट को एकदम फॉलो करते हैं कि हाँ हमें आज ये लेना है, आज वो लेना है। कुछ लोग होते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि कुछ भी खा लो, जिम जा रहे हैं, फिट रहेंगे।
2: देखिए, डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। हम 70-30% का रूल बोलते हैं, 70% आपका सारा डाइट रोल, 30% आपने एक्चुअल जो आपने वर्कआउट किया वो है। जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, जंक फूड खा रहे हैं आप, ऑयली फूड खा रहे हैं आप, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका जो वर्कआउट आपने किया है वो सारा बेकार है। तो डाइट का रोल 70% है आउट ऑफ 100%। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो

0: हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
1: नहीं, मैं इसलिए ऐसा आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जंक फूड एंजॉय कर सके या फिर इस तरह की चीज़ें खा सके, इसीलिए तो हम जिम जाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। क्या ऐसा सच में होता है कि आप कुछ भी खाओ और जिम जाओ तो चीज़ें बैलेंस रहती हैं?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, दोनों के ही लिए जंक फूड सही नहीं है।
1: ऑल्सो प्रोटीन सप्लीमेंट और प्री वर्कआउट ड्रिंक्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। क्या ये लेना सच में हेल्दी है या फिर हेल्थ के लिए इससे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं इससे?
0: देखिए, आप प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप जो बोल रहे हैं, ये हेल्दी हैं, लेकिन ये कितने ऑथेंटिक हैं ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे नकली प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जो कि आपको बेच दिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि उसमें क्या मिला हुआ है, एक्चुअली में प्रोटीन है या कुछ और मिला हुआ है उसमें। प्लस डोजेस, कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए, आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है। आप 30 ईयर्स के हो अलग डोज होगी, आप 40 ईयर्स के हो अलग डोज होती है। तो डोज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट या बाकी के जितने भी सप्लीमेंट हैं वो कैसे लेने चाहिए और किस मात्रा में लेने चाहिए।
1: आपने बोला कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना ऑथेंटिक है। अब ये पता कैसे करेंगे हम?
0: कितना ऑथेंटिक है ये आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं। प्लस इनकी गाइडलाइंस होती हैं, आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, जो इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे लिखे होते हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। मार्केट में उन चीज़ों पे वो कुछ मार्किंग ऐसी होती हैं जो मिस होती हैं, बस वो पर्सन को पता होनी चाहिए।
1: तब डॉक्टर के एडवाइस से हम ले सकते हैं सप्लीमेंट्स
0: हाँ,
1: या प्री
0: डॉक्टर के
1: वर्कआउट ड्रिंक्स
0: एडवाइस
1: जो
0: से
1: भी
0: आप
1: हो।
0: ले सकते हो, वो आपको डोज भी बता सकते हैं कि किसी को कोई, अगर मान लो प्रोटीन से अगर कोई दिक्कत है तो उसको प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा फिर।
1: और ये जिम इंजरीज जो हैं, ये पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप के लिए है कि कोई यूथ है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है उन पे ज़्यादा इसका असर हो सकता है?
0: किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन हाँ, 40-45+ में क्या होता है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारा बोन का कैल्शियम कम हो जाता है, तो उसको हमें ट्रेन उस लेवल पे करना चाहिए अपने एज के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम 30 साल के जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेन करें उसको, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये चीज़ आपके जो ट्रेनर हैं वो आपका आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट प्लान करते हैं।
1: आपका कोई एडवाइस यूथ के लिए या फिर जो भी लोग जिम जा रहे हैं?
0: जिम जा रहे हैं उनके लिए मेरा यही एडवाइस है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से जिम में इंजरीज ना हो। उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वार्म अप है। वार्म अप में क्या होता है, जिस पार्ट को आज आप वर्कआउट करने जा रहे हो उसको आप रेडी करो। कई लोग इस वार्म अप को ही अवॉइड कर देते हैं, तो बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं होती कि आपने एकदम से आपने ओवर वेट उठा लिया, आपको जिम इंजरीज हो जाएगी। प्लस आप करेक्ट फॉर्म में करें, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरीज जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है शोल्डर और बैक की। हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादातर उसको बेंड करके एक्सरसाइज करते हैं। प्लस आपकी क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लूज़ कपड़े पहनिए। अगर आप टाइट क्लोथिंग करेंगे तो आप उस रेंज में नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे जिस रेंज में होनी चाहिए। शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आपके इल फिटिंग शूज़ हैं तो आपको इंजरीज हो सकती है। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि वर्कआउट के बाद में आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की आपको नींद लेनी ही चाहिए। प्लस आप उस बॉडी को रेस्ट दीजिए जिस पार्ट की आपने एक्सरसाइज करी है।
1: कुछ लोग जो होते हैं वो जिम जाकर या फिर जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये डाइट लो, तो बहुत कम पीरियड में, मतलब 1 से 2 महीने में, या तो वो बहुत गेन कर लेते हैं या तो बहुत वेट लूज कर देते हैं। कोई इंसान 80 kg का है और वो 1 से 2 महीने में 50 kg का हो जाता है, तो क्या इससे उसके हेल्थ पे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है उसको?
0: डेफिनेटली हो सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे कितना वेट रिड्यूस करना चाहिए और कितना मुझे वेट गेन करना चाहिए। ट्रेनर्स आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ करिए, आपका इतना वेट कम हो जाएगा, ये चीज़ करने से आपका इतना वेट गेन हो जाएगा, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको वेट गेन और लूज़ कितना करना चाहिए।
1: आजकल जो बॉडी क्लॉक है वो पहले जैसा हुआ करता था, अब वैसा नहीं है। कुछ लोग डे शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनको अगर जिम जाना हो तो उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें फॉलो करना चाहिए?
0: देखिए, वो अपना जिम का वर्कआउट अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिनकी नाइट शिफ्ट है वो आप अपना ऑफिस जाने से पहले, जो इवनिंग आवर होते हैं 5 to 6 के अराउंड, आप अपना वर्कआउट करके आप अपना जा सकते हैं ऑफिस में। और जिनकी डे शिफ्ट है वो अपना मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में आके भी कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं डाइट बोलूंगा, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो नाइट में खाना बहुत खाते हैं, तो उनका फिर सारा वर्कआउट जीरो हो जाता है।
1: डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे युवा साथियों को इतना अच्छा एडवाइस दिया आपने, हेल्थ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद साक्षी जी।
2: अभिषेक, कितना कुछ जानने को मिला ना। अगर यही चीज़ें मुझे पहले पता होती तो मुझे कुछ दिनों पहले जिम इंजरी ना हुई होती। खैर, मेरी छोड़ते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और समझने को भी।

0: पर। अभिषेक, इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक सबसे ज़रूरी बात हम भूल ही जाते हैं, वो है सेहत। हमें आज सब कुछ चाहिए, एजुकेशन, नेम, फेम एंड गुड वेल्थ, पर इन सब के बीच रह जाती है हमारी हेल्थ।
1: एकदम सही कहा आदित्य। और मुझे तो इस बात से याद आया कि हमारे बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते थे कि बेटा सेहत है तो सब कुछ है।
0: बिल्कुल अभिषेक, आजकल टाइम पर ठीक से खाना तो छोड़ो, पूरी नींद भी नहीं ले पाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता।
1: आदित्य, नींद न पूरी होने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना खराब असर पड़ता है। पता है, एक साइकोलॉजिस्ट से बातों के दौरान मुझे पता चला कि हिंदुस्तान के शहरों में करीबन 25% लोगों को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है, और इससे ओवरऑल हेल्थ पर कितना खराब असर पड़ता है, मैं तो सोचकर ही डर जाता हूँ।
0: देखो, मैं बता रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जैसे इसका सलूशन है टाइम टू टाइम हेल्दी फूड इनटेक, और साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है डेली वर्कआउट, जिससे बॉडी नेचुरली थक जाती है और बेहतर महसूस करती है, क्योंकि वर्कआउट करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, विच इज़ अ फील गुड हार्मोन। मैं
1: मैं तो
0: तो डेली
1: डेली
0: वर्कआउट
1: वर्कआउट
0: हैं
1: करता और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी वर्कआउट करते ही होंगे, और जो नहीं भी करते वो अब करने लग जाएंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं, बस वर्कआउट करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे तो पड़ती है। उसके लिए मैं कुछ ऐसे गाने सुन लेता हूँ जिससे मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ। चलिए फिर सुनते हैं मोटिवेशन से भरा ये गाना।

0: आदित्य, सच बताऊं तो ये गाना सुन के मैं इतना चार्ज हो गया हूं कि मन कर रहा है मैं यहीं स्टूडियो में ही पुशअप करने लग जाऊं।
1: अरे रुको जरा, हम विषय से विचलित नहीं होते, विषय पर वापस आते हैं। एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है सुबह योगा, मेडिटेशन करना। जैसा कि आपने बताया, आजकल लोगों में बेचैनी बहुत है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा जब डेली योगा होगा।
0: एकदम सही कहा आदित्य, योगा हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है हमारा ये अगला गाना।

0: बहुत ही प्यारा गाना था। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, क्विक बस, जिसमें हम जानेंगे कुछ क्विक अपडेट्स। फीफा 2026 का टूर्नामेंट आज समाप्त हुआ विद स्पेन एज विनर एंड सेकंड, अर्जेंटीना इन सेकंड एंड इन इंग्लैंड इन थर्ड पोजीशन। हाल ही में रिलीज हुई मूवी ओडिसी, जिसको डायरेक्ट किया है हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने, उनकी फिल्म रिलीज हुई है 17 जुलाई में, जिसने सिनेमा गोवर्स में भगदड़ मचा दी है। और उनके फिल्म के प्रीमियर के लिए मूवी के दो एक्टर्स मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड भी उनके साथ मुंबई आए थे। जैसा कि आजकल हम सब सोशल मीडिया के मीम्स में देख पा रहे हैं कि मुंबई के एक कैफ़े में जहां वो चाय ब्रेक के लिए चाय के ग्लास के कप में चाय पी रहे थे। अभिषेक, ऐसा ही लगता कि हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ भी इंडिया की चाय की चुस्की को मना नहीं कर पाए। वैसे अभी इनकी और एक नई भी फिल्म भी तो आ रही है, टॉम हॉलैंड की। यस, स्पाइडरमैन फिल्म। अभिषेक, मैं पिछले 1 महीने से बस उसी फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब रिलीज़ हो और मैं जाऊँ और जाके देखूँ, मज़ा ही आ जाएगा।
1: लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो इस फिल्म को लेकर। तो चलो फिर हम सुनते हैं एक अगला गाना।

0: इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के अंतिम सेगमेंट की ओर, टुडे इन हिस्ट्री। इतिहास में 20 जुलाई की दिन को काफ़ी के दिन को मानवता में बहुत महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं इस दिन। इतना ही नहीं आदित्य, इसी तिथि पर 1976 में अमरीकी अंतरिक्ष यान वाइकिन ने मंगलयान की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया था। यह मंगलयान ग्रह की सतह पर पहली लैंडिंग थी। हाँ, और 1969 में अपोलो 11 के मिशन के दौरान अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील एम्स्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ट्रिन चंद्रमा की सतह पर इसी दिन विश्व के पहले मानव बने थे। और आज के दिन 1973 में लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस ली ट्रेजिकली पास्ड अवे इन हांगकॉन्ग एट द एज ऑफ 32।
1: एंड द बर्थ ऑफ जर्जर मेंडल, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, हु लेड द फाउंडेशन लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्रिएटिंग द मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत समाप्त होने को आया है। आशा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम से कुछ नई बातें सीखने को आपको मिली होंगी और मूड फ्रेश करने के कुछ मौके मिले होंगे। श्रोताओं, फिर मिलते हैं कुछ नए किस्से और कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक।
0: और मैं हूं आदित्य। चलिए विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं आपको इस प्यारे गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय हुआ है हमारे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक

0: नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जाँच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both houses of parliament witnessed multiple adjournments amid uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case, on the first day of the monsoon session today. Later, the Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., the House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. After obituary reference, when the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in smooth functioning of the House and maintain decorum, but the opposition members continued with their protest, leading to adjournment of the House till 12 noon, when the Lok Sabha House met after the 6th adjournment at 3 p.m. Similar situation prevailed in the House, forcing the chair to finally adjourn the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed multiple adjournments before being finally adjourned for the day. The House today witnessed 6 adjournments over the NEET issue. In the Rajya Sabha, the proceedings began at 11 a.m. with the oath of the newly elected members. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम को 5:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत का, कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए आज हम लेकर आए हैं कुछ मिले जुले लोकगीत।
1: बिल्कुल वंदना बहन। और देखिए, इसमें अलग अलग विषय होते हैं और लोक
0: जी
1: संगीत हमारे जो लोक सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करता है।
0: जी
1: देखिए, आजकल देखिए परेशानियां सबको ही हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उन परेशानियों में भी यदि हम अपना चेहरा खिला हुआ रखते हैं और
0: जी जी
1: हंसमुख बने रहते हैं, तो जो हमारा आसपास का जो वातावरण है ना, बहुत ही सकारात्मक हो जाता है वंदा बहन। और ऐसी ही कुछ बात कही है करमपाल सिंह, करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा ने, तो आइए सुनते हैं ये क्या क्या कहते हैं। हंस हंस प्रेम से बोलो।
0: जी बिल्कुल।

0: तो अभी आप सब सुन रहे थे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा से ये लोकगीत। और वंदना बहन देखिए ना, हमारा जो गांव है कितना सुंदर है, अच्छी हवा, स्वच्छ हवा, हर तरफ हरियाली।
1: बिल्कुल, गांव हरा भरा ही होता है, और जब उसमें साफ स्वच्छता और पर्यावरण साफ रहता है तो हमारे जो भाई बहन है वो अपने दिल से कहते हैं ये बात कि हमारा गांव बहुत सुंदर है।
0: मेरा मतलब सबसे सुंदर मेरा गांव, सभी
1: जी
0: कहते हैं,
1: हाँ, जी
0: और
1: बिल्कुल,
0: वाकई होता भी ऐसा है कि
1: जी
0: सबका ही गांव सुंदर होता है। तो ऐसी ही कुछ बात गोपाल सिंह बर्मन कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जी

0: देखिए कुसुम बहन, हमारे भाई सुन रहे थे अभी गोपाल सिंह बर्मन की आवाज़ में बहुत प्यारा सा लोकगीत, और आगे बढ़ते हैं। और देखिए, वीणा ढिल्लोर और सखियाँ कुछ इस तरह अपने घर परिवार की बातें कर रही हैं। कहते हैं जैसे बच्चों को पालते हैं ना, कोई भी हम फसल अगर उगाते हैं तो उसकी भी ऐसे ही देखभाल करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल। और देखिए ना वंदा बहन, जैसे कि परिवार होता है,
0: जी
1: परिवार में हर एक सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घर का जो मुखिया होता है ना, वो मेन होता है।
0: जी
1: उसी जैसे बाग में जो पेड़ होता है, जो तना होता है, जड़ें होती है, तो घर का बुजुर्ग भी वही होता है, और सारी उसकी
0: बिल्कुल
1: शाखाएं परिवार के सदस्य। और कुछ ऐसी ही बात कही गई है वीणा ढिल्लोर और सखियों की आवाज़ में।
0: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे वीणा ढिल्लों और सखियों की आवाज़ में ये लोकगीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर और संयोजक शिव नंदन लाल।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं
1: आकाश कुमार।
0: और आकाश, क्या है आज खास कार्यक्रम में? सबसे पहले ये हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, और सबसे पहले खास तो यही है, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है और चैंपियन कौन है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। इसके अलावा क्रिकेट की बात करेंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडीआई खेला गया, उस पर विस्तृत जानकारी रिपोर्ट तो आपको देंगे ही, साथ ही साथ एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी, और उस पर आज हम बात करेंगे पैरा पावर लिफ्टिंग की, और रेसलिंग रैंकिंग सीरीज जो बुडापेस्ट में आयोजित है उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा ग्रीको रोमन में वो जानेंगे। साथ ही साथ एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे, आईएसएफ वर्ल्ड कप पर टीम रवाना हो चुकी है, कितनी तैयारियां हैं, और ये सब आपको हमारे सहयोगी शाहिद आजमी की रिपोर्ट में आप जान पाएंगे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स राउंड 4 के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, और यूटीटी सीजन 7 का क्या है हाल वो हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे।

0: फीफा की बात करेंगे सबसे पहले। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है और चैंपियन बन गया है स्पेन। खिताबी मैच स्पेन ने जीता और अर्जेंटीना को हराया, और अर्जेंटीना जो है अपना जीत का सपना पूरा नहीं कर पाया। लगातार दूसरी जीत होती अगर अर्जेंटीना जीतता तो। क्या रहा मैच का हाल, आइए सुनते हैं फीफा की इस रिपोर्ट में।
1: Ferran Torres away! Spain are the champions! Spain have seized their second star!
2: फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे रोमांचक महाकुंभ का अब समापन हो चुका है। 11 जून से 20 जुलाई 2026 तक चले फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को रोमांच, जुनून और यादगार लम्हों का ऐसा संगम दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी तीन देशों, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर की। पहली बार 32 की जगह 48

0: टीमें मैदान में उतरी और 16 विश्व स्तरीय स्टेडियमों में खेले गए 104 मुकाबले ने इस विश्व कप को अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बना दिया। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में विश्व फुटबॉल के दो दिग्गज टीमें स्पेन और अर्जेंटीना खिताब के लिए आमने सामने थी। 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली। स्कोर बोर्ड पर 0-0 की बराबरी रही, लेकिन स्पेन ने पूरे मुकाबले में गेंद पर करीब 65% कब्जा बनाए रखते हुए लगातार अर्जेंटीना के गोल पर दबाव बनाए रखा। मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ आया 90 मिनट के बाद अतिरिक्त तीसरे मिनट पर, जब अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। अर्जेंटीना 10 खिलाड़ी के साथ खेलने को मजबूर हो गई और यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में 106वें मिनट पर स्पेन के कोच का दाव सफल साबित हुआ। विकल्प के तौर पर मैदान में आए फेरान टोरेस ने निको विलियम्स के शानदार पास को गोल में बदल दिया। यही एक गोल स्पेन के लिए इतिहास लिख गया। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। स्पेन के मिडफील्ड मास्टर रॉड्री को शानदार और प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान मिला। उपविजेता अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपनी जादुई फुटबॉल से सबका दिल जीतते हुए सिल्वर बॉल अपने नाम किया। वहीं फ्रांस के सुपरस्टार किलियन एम्बापे ने 10 गोल और 4 असिस्ट के दम पर गोल्डन बूट जीतने के साथ साथ ब्रॉन्ज बॉल भी हासिल किया। गोलकीपिंग में स्पेन के उनाई सिमोन का कोई जवाब नहीं रहा। उन्होंने 8 मैचों में 7 क्लीन शीट रखते हुए गोल्डन ग्लव्स पर कब्जा बनाया। महज 19 वर्ष के स्पेनिश डिफेंडर पाउ क्यूवर्सी को टूर्नामेंट का बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित प्रदर्शन के लिए नीदरलैंड्स को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया।
1: तो स्पेन ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया और अब तक वर्ल्ड कप का लगातार 2 बार खिताब सिर्फ ब्राज़ील और इटली ही जीत पाए हैं और अर्जेंटीना ये इतिहास रचने से चूक गया। एक्सपर्ट से बात करी हमने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी राजा रामन क्या कहते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप पर, आइए सुनते हैं।
2: जिस तरीके से फाइनल मैच हुआ है, स्पेन का दबदबा रहा और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अर्जेंटीना चैंपियन बनने का, दोबारा चैंपियन बनने का प्रयास कर रहा है। मेसी जैसे प्लेयर के होते हुए शायद उनके प्रयास कमजोर पड़ गए, लेकिन स्पेन की जितनी तारीफ की जाए कम, बॉल पोजीशन हो या नंबर ऑफ शॉट्स ऑन गोल हो, स्टैटिस्टिक्स उनके फेवर में है और ये दिखाता भी है और हुआ भी था मैच में कि अर्जेंटीना को कोई मौका ही नहीं थी और जो 2 शॉट्स अर्जेंटीना के कोशिश हुए थे दोनों एक्स्ट्रा टाइम में आए थे। स्पेन इज डिजर्विंग विनर और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से वो फाइनल खेले हैं, हालांकि फुल टाइम में रेगुलेशन टाइम में जीत लेना चाहिए था स्पेन को, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जीतना कोई बात नहीं, लेकिन दे आर डिजर्विंग चैंपियंस।
1: स्पेन डिजर्व करता था, लेकिन सर अर्जेंटीना कहीं ना कहीं स्पेन के सामने कमजोर दिखा, अटैक इतना कर नहीं पाया, कहां कमी रह गई सर?
2: उनकी कमी नहीं, स्पेन की तैयारी बहुत सही थी। स्पेन ने अर्जेंटीना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा था और पूरे टूर्नामेंट में ये कहना होगा कि अर्जेंटीना मेसी के जादू पे डिपेंड हुआ था और वो जादू कल चला नहीं, देर रात में नहीं चला, हमारे यहाँ देर रात चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से मेसी को रोका उन्होंने, मेसी का जादू रोका, आई थिंक स्पेन अपनी तैयारी दिखा रही थी। सिर्फ तैयारी नहीं, इट इज नॉट ओनली अबाउट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन उनका बहुत बढ़िया रहा, रोक रखे थे मेसी को। हमेशा यह होता है कि मेसी लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हैं और अगर मैच उनके पक्ष में नहीं जा रहा तो फिर वो राइट में आते हैं और फिर वहां से कुछ कर दिखाते हैं, उस वो करने का उनको मौका नहीं दिया और ओवरऑल टीम शायद स्पेन की बेहतर थी, तभी तो ये रिजल्ट निकल गया।
1: एक और चैंपियन की अगर हम बात करें, रोनाल्डो की बात करें, तो उनका ये आखिरी विश्व कप था।
2: अच्छे प्लेयर है लेकिन शायद मेसी के स्तर के प्लेयर नहीं है, वो भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है, विश्व में सबसे अच्छे प्लेयरों में से माने जाते हैं रोनाल्डो पुर्तगाल के, लेकिन मेसी वाला स्टैंडर्ड शायद वो बड़ा मुश्किल होता उनको अपनाना। एक्चुअली इट नॉट फेयर, दोनों को कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन पुर्तगाल वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रोनाल्डो और उनकी भी चली नहीं इस टूर्नामेंट में। और अफसोस यही रहेगा कि मेसी जैसे प्लेयर और रोनाल्डो जैसे प्लेयर

0: और सुआरेस जैसे प्लेयर फिर नहीं दिखेंगे, लेकिन ये खेल का एक रिवाज है। कुछ पुराने प्लेयर जाते हैं, कुछ नए प्लेयर आते हैं, उभर कर आते हैं, नए सितारे आते हैं, और विश्व में जो फुटबॉल फैंस हैं उन्हें प्रेम होता है नए प्लेयर्स के साथ। तो आप देखिए, पहले थे, उनके बाद मैराडोना बहुत बड़े स्टार बने, आज की तारीख में मेसी का चलता है, कल कोई और प्लेयर आएगा। और ये खेल है और हमको अपनाना पड़ेगा कि शेल्फ लाइफ काफी लिमिटेड होता है। रोनाल्डो और मेसी काफी लंबा खेल गए और दो अच्छे बेहतरीन प्लेयर दुनिया की किस्मत थी कि हमारे टाइम में ये आए और देव एंटरटेन अस और फिर अपना रिटायरमेंट भी ले लेंगे।
1: स्पेन के कप्तान अगर रॉड्री की बात करें तो उन्होंने मिडफील्ड की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई, उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से भी नवाजा गया, यानी कि गोल्डन बॉल अवार्ड उन्हें दिया गया।
0: डिजर्विंग है, फिर से यही कहूंगा।
1: जी
0: जिस तरीके से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेला, अपनी टीम को संभाला, अटैक को देखा और फिर डिफेंस में भी बहुत मदद की, इट इज नेचुरल दैट ऐसे प्लेयर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट माना जाएगा। जाहिर सी बात है, हमेशा यही देखते हैं कि गोल स्कोरर कौन, सबसे ज्यादा गोल कौन बनाया है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग बैठ के डिसाइड किए कि ये अवार्ड इनको जाए।
1: और गोल्डन बूट अवार्ड मिला किलियन एम्बापे को।
0: इतने सारे गोल बनाए उन्होंने फ्रांस के लिए, हालांकि फ्रांस फिनिश्ड फोर्थ, इंग्लैंड से भी उनका हार का सामना करना पड़ा, उनको लगातार 2 मैचेस हारे हैं। फ्रांस से लोगों की उम्मीद थी कि वो फाइनल खेलेंगे और फिर जीत भी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला है, एम्बापे ने खेला है और इतने सारे गोल बनाए, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर। लेकिन फ्रांस बेहतरीन टीम थी, सेमीफाइनल तक पहुंचना और फिर फोर्थ प्लेस हासिल करना, बहुत कम टीम के पास ऐसा मौका मिलता है, और फिर ऐसे प्लेयर हम सबके दिलों पे राज करने लग जाते हैं।
1: पूरे अगर फीफा वर्ल्ड कप पर अगर नजर डाले तो कौन सी टीम ऐसी थी जिसने अपनी और अपना ध्यान आकर्षित किया और अपने प्रदर्शन से सबको अचंभित कर दिया?
0: स्पेन लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिया है, और अर्जेंटीना, क्योंकि वो कई सारे मैचेस लास्ट मिनट में एक या दो गोल बना के जीते हैं, तो अर्जेंटीना को और हमेशा सबका ध्यान जाता है। दे विल ऑलवेज रिमेन अ पेरिनियल फेवरेट। दुनिया में कोई भी ऐसा विश्व कप टूर्नामेंट नहीं होगा जहां पे अर्जेंटीना की ओर सबका ध्यान ना जाए, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन टीम्स हैं, स्पेन स्पेन हो गया, इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, फ्रांस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, नॉर्वे, उनके भी कई सारे फैंस हैं, तो बहुत अच्छे टीम्स थे। लेकिन अफसोस होता है दीपिका, इतने सारे टीम होने के बावजूद हमारा टीम वहां नहीं पहुंचता है। होपफुली हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और फिर हम सिर्फ खेल प्रेमी नहीं होते हुए खिलाड़ी भी हमारे यहाँ से बहुत सारे निकले और फिर वो स्टैंडर्ड उठाए ताकि हम भी जाके विश्व कप हमारा टीम अच्छा प्रदर्शन करे।
2: लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट फैंस को देखने को मिला रनों का ऐसा तूफान जिसने आखिरी ओवर तक रोमांच बनाए रखा। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक जड़ा, विराट कोहली ने शानदार संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। इंग्लैंड ने तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारत को 27 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर अपने नाम कर ली। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय गेंदबाजी शुरुआत से ही दबाव नहीं बना सकी। ओपनर बेन डेकेट और जैकब बेथल, इन दोनों के बीच पहले ही विकेट के लिए 192 रन की शानदार साझेदारी हुई। बेन डेकेट ने 141 रन की शानदार पारी खेली, जबकि जैकब बेथल 91 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डेथ ओवर्स में जो रूट ने सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए और कप्तान जॉश बटलर ने महज 13 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। 50 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरह बेअसर दिखाई दिए। 388 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले ही विकेट के लिए 147 रन जोड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रच दिया। रोहित ने सिर्फ 110 गेंदों में 138 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। इसके साथ ही रोहित शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए।

0: रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और 60 गेंदों पर 74 रन बनाकर भारत की उम्मीदें जिंदा रखीं। लेकिन जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि भारत इतिहास रच देगा। लेकिन 38वें ओवर के बाद मैच ने पूरी तरह करवट बदल ली। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने अपने घातक स्पेल से भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। करन ने लगातार 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया। ईशान किशन 14 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। केएल राहुल भी सिर्फ 12 रन ही बना सके। आखिरी ओवरों में निचले क्रम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम इंडिया 50 ओवर में 360 रन ही बना सकी और मुकाबला 27 रन से हार गई।
1: बिल्कुल, मुकाबला हार गई टीम इंडिया। बढ़िया बल्लेबाजी के बावजूद शुभमन गिल की अच्छा योगदान रहा। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी बैटिंग दिखाई, और रोहित शर्मा ने तो सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके बावजूद जीत नहीं मिल पाई और सीरीज हाथ से निकल गई। क्या कहते हैं शुभमन गिल इस प्रदर्शन को लेकर, आइए सुनते हैं।
2: पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं होता इतना, तो आप ऑब्वियसली जितने ज़्यादा रन आप बनाना चाहते हो उतने बनाते हो, बट अगर आप देखें तो अप अंटिल 46-45 ओवर्स हम उनसे आगे थे इफ़ यू लुक एट द कंपैरिजन, बट वी ऑलवेज न्यू कि आखिरी के 3 ओवर में 60 रन बनाने चेस करते हुए बहुत अलग होता है जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि आप देख नहीं रहे होते हो कि आप कितने रन बनाने। तो आई थिंक उस लिहाज से हमें था कि अगर 10 की रन रेट हमारी रिक्वायर्ड रेट 10-11 के आसपास रहे तो हमारे पास चांस रहेगा, बट आखिरी 4-5 ओवर में आई थिंक वो 12-13 पे चला गया और थोड़ी विकेट भी स्लो हो गई, तो उतनी ईजी नहीं था शॉट मारने लास्ट में। जी बिल्कुल, अगर आप स्क्वाड देखें, हमने जो फर्स्ट स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें से कम 5 प्लेयर ये मैच नहीं खेले, तो एक प्लेयर इंजर्ड होता है आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन खिलाने को देखते हो, 2 प्लेयर होता है कुछ अलग कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक हर मैच के बाद कोई ना कोई प्लेयर मिस कर रहा है, तो कहीं तो हम कुछ ट्रिक मिस कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप को नज़र में रखें, हम 11 मैच लगातार खेलने हैं और यहाँ पे प्लेयर 2-2, 3-3 मैच की सीरीज भी फिनिश नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो कहीं पर तो कमी है कि हमारे प्लेयर लगातार हम मैच नहीं खेल पा रहे हैं, 1-2 मैच खेलते हैं, कोई निकल या कुछ हो जाता, फिर वी आर फोर्स टू प्ले अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम सोचते नहीं है कि हमको मे भी खिलाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें देख के थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि एक दिन पहले सुबह आके अगर आपको पता लगता है कि यार ये प्लेयर का निगल है कोई, एंड देन इट्स ऑलमोस्ट लाइक डू यू वांट टू टेक अ चांस, कोई 80% फिट है, आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हो, वो अगर 5-6 डाल के बाहर आ जाता तो आप किससे बोलिंग करवाओ, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, डिफिकल्ट रहता है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एज अ ग्रुप आई डोंट नो हमारी फिटनेस या वो सब चीज़ों पर इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है।
1: कप्तान के तौर पर कितनी चुनौतियां रहती हैं फील्ड पर, उसके बारे में शुभमन गिल बता रहे थे, और इसी मैच से जुड़ी हमने खास बातचीत करी हमारे एक्सपर्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी राजारामन जी से, आइए सुनते हैं वो क्या बताते हैं।
3: भारतीय टीम से हमेशा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें रहती है, क्यों, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल में शायद दबदबा कम रहा है, लेकिन आप T20 के चैंपियन है, वनडे क्रिकेट में आपका हमेशा ही प्रदर्शन बेहतरीन रहता है, लेकिन ये पूरा टूर आयरलैंड वाला टूर और फिर इंग्लैंड का टूर शायद मैं खराब नहीं कहूंगा, नतीजे खराब आए और बेहतर क्रिकेट की उम्मीद रहती है। अगर हम वजह ढूंढे तो मुझे लगता है टीम सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या फिर चयनकर्ता कहना चाहिए कि हम आगे की सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, अब वो दिखता नहीं है क्योंकि कुछ सीनियर खिलाड़ी भी हैं, कुछ नए खिलाड़ी आए हैं, शायद वो जो हम IPL के प्रदर्शन से उनको चुन लेते हैं और फिर सोचते हैं कि वो वनडे में भी अच्छा कर जाएंगे और इंटरनेशनल T20 में भी अच्छा करेंगे। अफसोस यही है कि जो उम्मीद थी उस पे खरी नहीं उतरी हमारी टीम।
1: IPL के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करना अपनी टीम के लिए कितना सही लगता है आपको?
3: देखिए IPL को इग्नोर नहीं कर सकते, और क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, विश्व स्तर का टूर्नामेंट है, खिलाड़ी बाहर से आते हैं, यहाँ पे रन बनाना या विकेट लेना आसान नहीं है IPL में, लेकिन यहाँ के जो पिचेस है यहाँ पे आप रन और विकेट, रन बनाए या विकेट ले लें और फिर बाहर जाके अपना हुनर दिखाना, दोनों अलग चीज होती है, उसके लिए टीम चुननी चाहिए थी। अगर हम सिर्फ IPL के प्रदर्शन को देख के चुनते हैं और फिर सामने कंपटीशन क्या है, कहाँ जाके खेल रहे हैं, अगर हम इन फैक्टर्स को नजरअंदाज करते हैं

0: तो यही हाल होगा कि हम लगातार हारते आए। जीत क्या है हम शायद भूल चुके हैं, जीतना ही भूल चुके हैं, और यहां से उठना मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम को।
1: और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल सीरीज की, जिसमें आज हम बात करेंगे पावर लिफ्टिंग पर। और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में सीमित अवसरों के बावजूद उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, और हाल ही में घोषित भारतीय दल के अनुसार ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पैरा पावर लिफ्टिंग टीम में 7 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें हैं परमजीत कौर, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी। और अगर कोचेस की बात करें तो कोच हैं जितेंद्र पाल सिंह, अमित और नरेंद्र कौर। सभी खिलाड़ी 24 जुलाई को होने वाले पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धाओं में भारत को चुनौती पेश करेंगे, और ग्लासगो 2026 में पैरा पावर लिफ्टिंग में 4 पदक स्पर्धाएं होंगी, जिसमें पुरुष लाइटवेट, पुरुष हैवीवेट, महिला लाइटवेट और महिला हैवीवेट आयोजित की जाएंगी। और खास नज़र किन खिलाड़ियों पर रहेगी वो जान लेते हैं। पहले खिलाड़ी हैं सुधीर, जो पुरुष हैवीवेट में स्पर्धा करेंगे, जिन्होंने बर्मिंगम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, 2018 एशियाई पैरा खेल में कांस्य पदक अपने नाम लिया था, और 6 बार के राष्ट्र चैंपियन हैं, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में हैवीवेट वर्ग का गेम्स रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। और अगर इनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो हाल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में लगभग 212 किलोग्राम का सफल बेंच प्रेस उनका सर्वोच्च प्रदर्शन माना जाता रहा है, और अभी भी पदक की संभावना इनकी बहुत ही प्रबल मानी जा रही है। दूसरे खिलाड़ी हैं झंडू कुमार, और ये भी पुरुष लाइटवेट के खिलाड़ी हैं, और सुधीर हैवीवेट के खिलाड़ी थे, और ये है 72 किलोग्राम वर्ग के प्रमुख भारतीय पैरा पावर लिफ्टर हैं ये। इनकी उपलब्धियों पर अगर नज़र डालें तो 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्वर्ण पदक जीता था, और भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और अब चलते हैं एक खास रिपोर्ट की ओर। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टन शॉटगन और कितनी तैयारी है हमारे खिलाड़ियों की वो जानते हैं हमारे सहयोगी शाहिद आजमी से।
2: एशियाई खेलों से पहले भारतीय निशानेबाजों की तैयारियों को नई उड़ान मिलने वाली है। भारत ने ISSF विश्व कप में भाग लेने के लिए होंगजाओ में अपना 50 सदस्यीय मजबूत निशानेबाजी दल भेजा है। आपको बता दें, होंगजाओ में होने वाला ISSF वर्ल्ड कप 20 जुलाई से 29 जुलाई तक जारी रहेगा। हालांकि प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत 22 जुलाई से होगी। बात भारतीय दल की करें तो भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिला है। राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में पुरुष वर्ग में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, हिमांशु ढिल्लो, पार्थ राकेश माने, शाहू तुषार माने, नीरज कुमार और अनीश जैसे खिलाड़ी भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं हिमांशु ढिल्लो को, जो कुछ कशमकश में नजर आ रहे हैं।
3: फ्यूचर वाली टॉक है, इस पे मैं कोई कॉन्फिडेंट कुछ नहीं बोल सकते, बट ये है कि जो हमने ट्रेनिंग में किया है और अब जो हम आगे कर सकते हैं वो इस पे है कि हम हमारा आगे कर सकते हैं कि सिर्फ प्रोसेस है जो हमें मिलता है, जो हम करते हैं हर बार हर दिन, तो वही है कि वहाँ पे भी जाके हम सिर्फ प्रोसेस ही कर सकते हैं, बाकी जो गोल्ड है सिल्वर है वो सब हमारी हार्डवर्क के ऊपर निर्धारित है कि वो कैसा रहेगा उस दिन, कैसा क्या कुछ होगा।
2: ये है पार्थ राकेश माने।
4: हेलो आकाशवाणी के लिसनर्स, आई एम पार्थ राकेश माने। मैं अभी वर्ल्ड कप्स के लिए जा रहा हूँ एंड ऑल्सो फॉर द एशियन गेम।
2: तो वर्ल्ड कप को लेके कैसी तैयारी?
4: तैयारी बहुत अच्छे से हुई है पूरे टीम की, नॉट जस्ट मी। वी हैड अ गुड ट्रेनिंग सेशंस, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया हमने, बहुत टेक्निकली भी ट्रेनिंग अच्छे से हुआ है, मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है, कैंप्स में भी अच्छे से हुआ है, और मेरे होम टाउन जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ अंडर सुमा मैम, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से किया है, सो वी आर रेडी फॉर द वर्ल्ड।
2: सुमा जैसी कोच, आप जैसा निशानेबाज, वर्ल्ड कप में तो निशाना सटीक लगेगा।
4: डेफिनेटली सटीक लगेगा, तो जस्ट गोइंग विद द ट्रस्ट एंड बिलीव दैट वी विल परफॉर्म वेल।
2: पोडियम पे कौन सा स्थान हुआ, 1, 2, 3?
4: अभी वो डिसाइड होगा उसी दिन पे, जिस दिन पे मैं परफॉर्म करूंगा, एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू ग्रैब द गोल्ड, दैट इज ऑल।
2: तो शूटिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है वो दिन, जिस दिन आपको खेलना है उस दिन कैसा माहौल होता है, कैसे हालात होते हैं?
4: शूटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ज्यादा यू आर एबल टू मेंटेन यूर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप अगर उसको आपने मास्टर कर लिया तो यू विल हैंडल एवरी सिचुएशन।
2: बात महिला वर्ग की करें तो मनु भाकर, एलावलिन बालरवान, ईशा सिंह, राही सरनोबत, आशी चौक से तिलोत्तमा सेन, सोनम उत्तम मस्कर, साक्षी सुनील पाडेकर और सुरुचि से पदक की उम्मीदें रहेंगी। राही सरनो

0: जो अनुभव से भरी हुई हैं, कहती हैं कि वो हमेशा गोल्ड के बारे में सोचती हैं।
1: मुझे लगता है अभी इंडिया शूटिंग टीम ऐसे कगार पे है कि हम हमेशा ही अभी मुझे लगता है हर कंपटीशन में अच्छा करने लग गए हैं। अभी वो समय गया जब हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं ऐसा बोला जाता था, अब हमें काफी मेडल्स आते हैं। और मुझे लगता है कि शूटर्स का माइंडसेट अभी बदलता जा रहा है जैसे जैसे हमें मेडल्स मिलते जा रहे हैं। और जैसे मैं देख रही हूँ, आई फील हमारे प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं क्योंकि कोचेस अभी सब आ गए हैं, हमारे पिस्टल के लिए भी फॉरेन कोच अभी आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए।
0: वर्ल्ड कप में राही का मेडल एक दो तीन कौन?
1: राही तो हमेशा गोल्ड मेडल के लिए ही सोचेगी बिल्कुल, क्योंकि उसी को जीतना कहते हैं मुझे लगता है, तो प्रिपरेशन तो उसी के लिए होती है।
0: अब मिलते हैं इस साल म्यूनिक वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुकी सुरुचि सिंह से।
2: तैयारी मेरी अच्छी है वर्ल्ड कप में, जो मैंने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में किया है वही कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, उसी की मेरी कोशिश रहेगी।
0: हालांकि चैलेंजेस भी होंगे, चीन में खेलना है, जो आपके ओपोनेंट होंगे उसको देखते हुए कैसा लग रहा?
2: मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ अपना करना है, मैं ज्यादा नहीं सोच।
0: टीम के हिसाब से भी होता है कि उस दिन कैसा होता है, कितना मायने रखता है
2: वो दिन? एक तरीके से अपना दिन भी होता है, एक तरीके से वो भी माना जाता है, और फिर और हमारा ट्रेनिंग पे भी होता है, जो हमने ट्रेनिंग करी है, जो हमने सीखा है, क्या हम वो कर पा रहे हैं, वही रिजल्ट मिलेगा। मैं दिन में 4-5 घंटे फिलहाल ट्रेनिंग कर रही हूँ कंटिन्यू, उसके बाद ब्रेक लेके फिर 2-3 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ट्रेनिंग का टाइम बढ़ाया है, काफी सारे मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया है और बेटर शूटिंग करी है।
0: मेंटली ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग तीनों होती है, इम्पोर्टेंट क्या है?
2: सारी चीज इम्पोर्टेंट है और सारी चीजें करनी भी चाहिए एक एथलीट को, वरना एक छोटी सी गलती के कारण दिन खराब हो सकता है, मेडल से चूक सकता है।
0: यह है तिलोत्तमा सेन, जिनका कहना है होंगजाओ वर्ल्ड कप उनके लिए बेहद खास है।
3: वर्ल्ड कप के लिए तैयारी काफी अच्छे से चल रही है, मेरा आई एम रिप्रेजेंटिंग बोथ 10 एंड 50। आई हैव 2 गेम्स, 2 मैचेस, सो एक्साइटेड एंड ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी से जा रहा है।
0: दोनों कैटेगरी में क्या मेडल देखेंगे आपका?
3: हाँ जी, मैं बिकॉज एक कैटेगरी में मैं सिर्फ रैंकिंग पर्पज के लिए खेल रही हूँ, सो बट होपफुली 50 में आई ट्राई मैच।
0: इम्पोर्टेंट है चाइना का वर्ल्ड कप?
3: बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसी के स्कोर्स पे डिसाइड होंगे द अपकमिंग मैचेस एंड टीम, सो वेरी मच।
0: वहीं अब सुनते हैं आशीष चौकसे को, जो इसी रेंज पर 4 साल पहले एशियन गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं।
4: काफी होप्स हैं बिकॉज ये वही रेंज जिसमें मैंने पिछली बार एशियन गेम्स में 3 मेडल जीते थे, और फिर से हम सेम शहर में जा रहे हैं, सेम रेंज होगी, सो काफी होप्स हैं, मेडल की होप है और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है।
0: इसका कितना बेनिफिट मिलेगा जो पिछली बार पदक जीता है, मेडल जीता है?
4: आई थिंक काफी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज एक रेंज का आइडिया हो जाता है, एक वहाँ का वेदर का आइडिया हो जाता है, और पिछली बार भी ऑलमोस्ट हम सेम टाइम पे ही गए थे एशियन गेम्स के लिए, सो आई थिंक काफी बेनिफिट है कि उसी जगह पर है। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस काफी होती है, और जब हम हमारी खुद की होम रेंज पे फायर करते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे जानने पहचानने वाले होते हैं, सो ऑलरेडी एक एथलीट को काफी प्रेशर होता है उसकी खुद की परफॉर्मेंस का, बट पीछे से जो एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की कि ये मेडल लेकर ही आएंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आ सकता है, एथलीट के ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक फॉर मी जितने लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, आई थिंक मैं उसको काफी इंस्पिरेशन की तरह लेती हूँ, एंड काफी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और थोड़ा सा ज्यादा काम करूँ अपने ऊपर ताकि मैं और ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे पाऊँ।
0: यह है एला वेनिल वलरिवान, जिनका कहना है मेरा मुकाबला खुद से है।
5: अभी तो हम करनी सिंह में है, हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, तो सुबह ट्रेनिंग करते हैं, दोपहर को हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, शाम को मेंटल ट्रेनिंग सेशन वगैरह रहते हैं, पूरा दिन इसी में निकल जाता है हमारा।
0: अच्छा, लगातार इवेंट्स होते रहते हैं, शूटिंग में तो दुनिया भर घूमना होता है, उसके बाद हर गेम पे फोकस करना होता है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट लगातार आता है, तो उसमें माइंडसेट कैसे अपना सेट करना पड़ता है?
5: आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया हम एक दिन को लेके चल रहे हैं अभी, तो अगर एक कॉम्पिटिशन खत्म हो गया तो उससे जो भी लर्निंग हमें सीखने को मिला है बस वो लेके अगले दिन की तैयारी फिर हम फिर शुरू कर देते हैं, अगले कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मुझे बस ये लगता है कि हम एक साथ सारे परफॉर्मेंसेज नहीं देखते हैं, हम एक दिन को लेके चल रहे हैं।
0: एशियन गेम्स के अलावा इस साल और क्या क्या खास होने वाला?
5: आई थिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप फाइनल्स भी है आगे, तो हम फिलहाल तो हम एक दिन को लेके चलते हैं।
0: आपकी कॉम्पिटिटर आपके ही देश में है तो और ज्यादा मेहनत करनी होती होगी, प्रेशर कुछ होता है क्या?
5: नहीं, मेरी कॉम्पिटिटर तो मैं खुद ही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे हर रोज बहुत ज्यादा अपने आप को खुश करना पड़ता है ताकि मैं खुद से बेटर कर पाऊँ।
0: खास ध्यान आजकल कहाँ है लेवल का, किस चीज पे ज्यादा फोकस?
5: कि मैं प्रेजेंट में रहूँ, फिलहाल अभी इस मोमेंट में मैं जो कर रही हूँ मैं बस उस पे ध्यान दूँ, और आगे का या अपने पास्ट के बारे में सोच के खुद को कंफ्यूज ना करूँ।
6: ट्रैप टीम की बात करें तो इस स्पर्धा में पुरुष वर्ग से उदयवीर सिंह, भवनीश महेंद्रत्ता और विवान कपूर, जबकि महिला वर्ग में प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी भारतीय चुनौती पेश करेंगी। इस साल हुए

0: तक के आईसीसी वर्ल्ड कप पर एक नजर डाले तो साल 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने मिला जुला प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इन उपलब्धियों के साथ भारत ओवरऑल पदक तालिका में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। राइफल और पिस्टल वर्ल्ड कप के ग्रेनेडा और म्यूनिख चरणों में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 5 पदक हासिल किए हैं। वहीं शॉटगन वर्ल्ड कप के लोनाटो और अल्माटी चरणों में भारत ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हालांकि इस वर्ष राइफल स्पर्धाओं में भारतीय निशानेबाज अब तक कोई पदक नहीं जीत सके हैं। ऐसे में होंगजाओ वर्ल्ड कप में राइफल टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। होंगजाओ विश्व कप भारत के लिए केवल पदक जीतने का अवसर नहीं बल्कि इस वर्ष होने वाले एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का महत्वपूर्ण मंच है। उम्मीद की जा रही है कि अनुभव और युवा जोश का ये शानदार मिश्रण होंगजाओ में भारत को कई पदक दिलाने में सफल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।
1: और अब चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में 2026 के चौथे एडिशन में राउंड 4 के सभी मैच ड्रॉ रहे। अली फिरोजा भारत के अर्जुन एरिगेसी से आधे अंक की बढ़त के साथ स्टैंडिंग में आगे बने हुए हैं और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने काले मोहरों के साथ खेलते हुए नोदर बेग को मात देने की पूरी कोशिश की लेकिन 41 चारों के बाद उन्हें ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। और अब बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 के ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को कोई पदक नहीं मिला। अनिल कांस्य पदक के मुकाबले तक पहुंचे और हार गए। सुनील कुमार राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए। सचिन सहरावत रैपचेस से बाहर हो गए और अनीत और अमन मुकाबले से शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। यूटीटी की बात करें तो यूटीटी सीजन 7 में डेम्पो गोवा चैलेंजर्स लगातार 3 मैच जीतकर 26 अंकों के साथ अंक तालिका में नंबर 1 पर है। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे 5वीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जाँच सुनिश्चित करना है।

0: इसी तरह जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament witnessed multiple adjournments on the first day of the monsoon session today, following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. However, question hour could not be taken up as opposition members from the Congress and the Samajwadi Party raised slogans over the NEET issue. Despite repeated appeals by Speaker Om Birla and later by Presiding Officer Dilip Saikia to maintain order and allow the House to function, the protests continued, leading to adjournment of the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions. The House was adjourned multiple times despite efforts by Chairman C.P. Radhakrishnan and Deputy Chairman Harivansh to conduct business. Later, the Upper House was also adjourned for the day. Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session this morning, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: President Drobdi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for the Indian business. Earlier, President Murmu and her Moldovan counterpart, Maia Sandu, held delegation-level talks. She also paid floral tributes at the monument of Stefan Chel Mari C. Sfanth in Chisinau. The Supreme Court has asked the Solicitor General to take instructions if a special investigation team, SIT, can be set up to probe the alleged embezzlement of donations at Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh. It also asked the parties not to politicize the Ram Temple donation row. The court said that the Ram Temple donation row is a simple case of commission of crime.

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम।

0: राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: वंदना बहन, राम संसार कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी भी हम सुनवाएंगे और
1: और
0: साथ में मनोरंजन तो होगा
1: मनोरंजन भी
0: ही।
1: होगा,
0: तो
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की, यानी 20 जुलाई की।
1: जी।
0: आज है विश्व शतरंज दिवस और ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का मुख्य उद्देश्य बुद्धि, रणनीति और धैर्य के इस प्राचीन खेल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
1: जी
0: ये खेल न केवल मानसिक क्षमता बढ़ाता है, बल्कि तार्किक सोच और सही निर्णय लेने की कला भी सिखाता है। और
1: बिल्कुल
0: वंदना बहन, जैसे होता है आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं और इस तरह के जो शतरंज के जो खेल होते हैं उससे उनका दिमाग भी बहुत ही बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, उससे वो अपने कार्य में भी बहुत आगे निकलते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे निकलते हैं वो।
1: बिल्कुल। और कहते हैं शतरंज खेल की उत्पत्ति प्राचीन भारत की 6ठी शताब्दी के दौरान हुई थी, जिसे हम चतुरंग कहा जाता था। और उसके बाद भारत ने ये खेला और उसके बाद ये इराक पहुंचा, जहां इसे शतरंज नाम दिया गया।
0: बिल्कुल
1: और इसके बाद सिल्क रूट के माध्यम से यूरोप और बाकी दुनिया में फैला।
0: बिल्कुल। और तब से दुनिया भर में शतरंज प्रतियोगिताएं, सेमिनार और ऑनलाइन आयोजनों के माध्यम से इस खेल का जश्न मनाया जाता है, लोग पसंद भी करते हैं।
1: बिल्कुल, इस खेल में उम्र, लिंग, शारीरिक क्षमता और सामाजिक स्थिति का कोई बंधन नहीं होता, कोई भी इसको खेल सकता है,
0: बिल्कुल
1: मन की रुचि ही होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि यह दुनिया भर में 170 से अधिक देशों में इसमें कार्यक्रम में कार्य आयोजन किया जाता है, और स्कूल, कॉलेज और स्थानीय क्लबों में शतरंज प्रतियोगिताएं भी होती हैं।
0: बहुत आयोजित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: बहुत बढ़िया है ये। और वंदना बहन, आज एक और अगर हम बात करें तो आज एक और खास बात है,
1: जी,
0: वो क्या है?
1: चंद्रयान दिवस,
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: चंद्र,
0: चंद्रमा दिवस।
1: बिल्कुल। तो अगर चंद्रमा दिवस की बात करें तो कहते हैं ना कि चंद्रमा पर जो सबसे बार पहली बार वो रखा था, कदम रखा था मानव जाति ने, तो उन कहते याद दिलाता है उस वक्त अमेरिका के जो आर्म स्ट्रोंग चंद्रमा,
0: हाँ, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ब्रज एल्ड्रीन चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिलाता
1: बिल्कुल
0: है वंदना बहन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को चंद्रमा के वैज्ञानिक अन्वेषण, शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष विज्ञान में विभिन्न देशों की उपलब्धियों के बारे में
1: बिल्कुल।
0: जागरूक
1: और
0: करता
1: ये
0: है।
1: मानव इतिहास का सबसे बड़े वैज्ञानिक मील का पत्थर, यानी कि चंद्रमा पर पहली बार इंसानी कदम पड़ने को याद दिलाता है। और कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण, चंद्रमा के महत्व और खगोल विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: बिल्कुल। तो ये तो बात हुई आज के दिवस के बारे में।
1: जी
0: और देखिए ना, आजकल जो हम देख रहे हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ का डिजिटलीकरण कर लिया गया है, तो ये हम सबके फ़ायदे के लिए है।
1: कुछ फ़ायदा भी है उसमें, कुछ नुकसान
0: जी
1: भी है। और देखिए जो फ़ायदा है उसके बारे में हम अपने भाइयों को बताते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले अपनी खतौनी, खसरा, इनके लिए कितनी बार तहसील
0: बिचौलियों
1: के या
0: बिचौलिए
1: कोर्ट
0: आ
1: में,
0: जाते थे बीच में, और
1: कोर्ट में
0: उनको
1: जाकर चक्कर लगाते थे कि हमारा
0: हाँ,
1: नंबर निकाल दो, या हमारा खसरा निकाल दो, हमारी खतौनी निकाल
0: यानी
1: दो।
0: कि उनको बड़ी परेशानी होती थी कि
1: जी
0: कैसे करें क्या नहीं करें, उनके मन में बड़ी परेशानी होती थी कि क्या
1: अगर
0: करा जाए।
1: कितनी बार नंबर भूल
0: हाँ
1: जाते थे तो वो निकलना मुश्किल हो
0: बिल्कुल,
1: जाता था।
0: लोन लेना होता था या और कोई बात करनी होती थी, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी, बिचौलियों से बात करनी पड़ती थी, भूमि धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा होती थी।

0: बिल्कुल, ऐसी ही एक जानकारी हम अपने भाइयों को दिलवा रहे हैं। डिजिटल भूमि अभिलेख और इनसे किसानों को होने वाले लाभ। श्री भालचंद्र त्रिपाठी से बातचीत कर रही हैं यमुनानगर। और श्री भालचंद्र त्रिपाठी जी जो कि मुख्य विकास अधिकारी जिला गौतम बुद्ध नगर से हैं, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। पुराने समय में जमीन के कागजात जैसे खतौनी, खसरा, जमाबंदी सरकारी दफ्तरों और पटवारियों के पास सुरक्षित होते थे। इन कागजातों को पाने के लिए किसानों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और मानसिक व आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल भू अभिलेख की शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों को पारदर्शी बनाना और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करना है। आज किसान सिर्फ एक क्लिक पर अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है। भू अभिलेखों से जुड़े कागजात का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस बदलाव से क्या फायदे हैं, किन गलतियों से नुकसान भी हो सकता है, किस तरीके से आप भूमि अभिलेखों को प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या फायदा हो रहा है। इसी विषय पर हमारी बातचीत हुई श्री भालचंद्र त्रिपाठी जी, मुख्य विकास अधिकारी जिला गौतम बुद्ध नगर से। आपका स्वागत है सर।
2: धन्यवाद
1: सर, आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल भूमि अभिलेख क्या है और इसमें कौन कौन से अभिलेख शामिल है।
2: देखिए, डिजिटल तो एक शब्द है जो हर चीज़ ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड हो जाती है। अभिलेख आपको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं नेट के माध्यम से, किसी साइट के माध्यम से, उन्हीं को डिजिटल हम कहते हैं। वो बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, उन्हीं में आपका भू अभिलेख भी है।
1: डिजिटल भूमि अभिलेखों से किसानों को जो फायदा हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, दो फायदे हैं। पहले किसानों को खतौनी के लिए बहुत बार लेखपाल को ढूंढना पड़ता था और एक लेखपाल पे कई कई गांव कई बार रहते हैं, तो उससे मिलने में कई बार कठिनाई हो जाती थी। आज के समय में डिजिटाइजेशन हो जाने से ऑनलाइन है भूलेख, आप भूलेख पे जा करके साइट पे और अपने नाम पता डालते हुए अपने अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी भूमि उसकी कितनी है, उस क्षेत्र विशेष में उसका जाना जा सकता है।
1: डिजिटल भूमि अभिलेखों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जो प्राप्त करनी होती है या लाभ लेना होता है, तो किस तरीके से सुविधा मिल रही है?
2: जी बिल्कुल, इसके माध्यम से आप पीएम किसान योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं, खाद इत्यादि प्राप्त करने में आसानी रहती है, इसके अतिरिक्त लोन लेने में आसानी है बैंकों को। यदि आपको जमीन से गिरवी रख के या जमीन के माध्यम से कोई लोन लेना है तो वो पा सकते हैं। और इसी बीच में सरकार ने एक और अच्छा प्रयास किया है जिसमें घरौनियों का निर्माण शुरू करके उसका वितरण किया गया है। तो घरौनी के माध्यम से हम आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी की भूमि होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, जिसके कारण मकान को लेकर के अक्सर विवाद होता था। और उस मकानों को यदि उसे बनाने में मकान के लिए कोई लोन चाहिए तो बैंक नहीं देता था, जबकि शहरों में रजिस्ट्री होती थी तो वो मिलता था, उपलब्ध होता था। तो घरौनी के निर्माण से अब बैंकों को भी ये सुविधा है कि उसकी भूमि की पहचान कर ले और किसान को सुविधा है कि अपने घर के लिए लोन ले सके। घरौनियों के निर्माण को ड्रोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार से चिन्हांकन करते हुए बनाया गया है, तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में मकान का चिन्हांकन जिस भूमि पे हुआ है उसका बेहतर ढंग से किया गया है और इससे आसानी है।
1: देखिए सर, जमाना बदल गया है और सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, ये नज़र आ रहा है हमको भी आपको भी, तो ऐसे में इस व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
2: चुनौती कोई नहीं है, बस हम आप जैसा जानते हैं अगर कोई गलत नियत से कोई काम करना चाहता है तो प्रिंट आउट गलत प्रस्तुत कर सकता है अभिलेखों में, जो पेपर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करे, लेकिन ऑनलाइन में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है
1: जी। अभी भी हमारे बहुत से किसान भाई बहन उतने शिक्षित नहीं है सर की जितनी जरूरत है आज की, तो ऐसे में ई दस्तावेज या भू अभिलेख को कैसे और किसके द्वारा प्राप्त करें जिसके द्वारा समुचित ढंग से दस्तावेज उन्हें मिल जाए?
2: विभिन्न गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, इसके अतिरिक्त हमारे जो राजस्व विभाग के लेखपाल हैं, कानून को हैं, उनसे किसी से तहसील में जाके संपर्क करके वो जानकारी कर सकता है। वकीलों के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध है, बाकी सरकार समय समय पर प्रचार प्रसार करती रहती है और जो जानकार है वो अन्य किसी जानकार व्यक्ति को जानकारी दे के, गैर जानकार को जानकारी दे के चीज़ों को बढ़ा सकता है। बाकी तो भूलेख साइट पर जाएंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
1: जिस पद पर आप हैं सर और

0: लेकिन विकास की जिम्मेदारी आप पर है और गौतम बुद्ध नगर शहर के साथ साथ गांव में भी बसता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र से जुड़े किसान भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज का जो समय है बहुत तेज गति से है, हर चीज ऑनलाइन होने से बहुत से साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो आप सतर्कता पूर्वक ही अपने किसी भी कार्य के लिए यूज करिए, अपनी विवरण जल्दी दूसरे को मत दीजिए, अन्यथा आप शिकार हो सकते हैं किसी चीज का। बहुत बार OTP के लिए उपयोग होता है, तो जब OTP देने से पहले ये देख लें, क्योंकि बहुत से सरकारी हमारी योजनाएं हैं जिनमें बिना OTP के बात आगे नहीं बढ़ती
0: जी।
1: और बहुत में आधार से भी OTP बिना पाए नहीं होती, जैसे हमारा फैमिली आईडी है, बिना आधार लिंक्ड OTP से फैमिली आईडी नहीं बनेगी, और भविष्य में फैमिली आईडी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, जैसे कि आधार कर रहा है
0: जी।
1: तो बस ये जानकारी रहे कि आप बगैर जाने परखे किसी अनजान को कोई OTP नहीं बताएं, किसी अनजान लिंक में कोई कभी आप टच करके उसे ओपन न करें, यदि आपका मोबाइल मना करता है कि ये हार्मफुल साइट है तो आप उस पर जाने से बचें, तो आप साइबर अपराध से बचे रहेंगे, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। ये इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है समय की बचत, और सब कुछ आपके पास कहीं पर भी उपलब्ध है, आप कहीं पर भी उपलब्ध हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, अन्यथा आपको उसी ऑफिस में जाके पहले तो सबसे बड़ी तो समय की बचत हुई, इसके साथ में वहाँ आने जाने में जो व्यय लगना था वो बचत हुआ, आपको अपना काम जो कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ता था तो उसकी भी बचत हुई, तो आप इन सारी चीज़ों से बच रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि बेहतर ही है, बस बात है सतर्कता पूर्वक अपना काम करने की, अपनी जानकारियाँ दूसरों को न दें जब तक कि वो किसी शासकीय योजना से संबंधित नहीं है।
0: जमीन के रिकॉर्ड जैसे खसरा खतौनी नक्शा और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जमीन से मकान से जुड़े हुए सभी दस्तावेज ऑनलाइन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, बिचौलियों की जरूरत नहीं होगी और हर योजना जो सरकार द्वारा आपके लाभ के लिए चलाई गई है, जैसे मुद्रा योजना, फसल बीमा योजना, मृदा कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन सभी का लाभ आप समय रहते प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारी बात हो रही थी श्री भालचंद्र त्रिपाठी जी से, जो कि मुख्य विकास अधिकारी हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के। आपने डिजिटल भूमि अभिलेख और इससे किसानों को होने वाले लाभ के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आकाशवाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस ओबी वेस्ट बातचीत में वाचन स्वर था यमुना गर्ग का, प्रस्तुतकर्ता तुषार पारासर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल। इसी के साथ राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल भूमि अभिलेख और इनसे किसानों को होने वाले लाभ श्री भालचंद त्रिपाठी से, जो कि मुख्य विकास अधिकारी जिला गौतम बुद्ध नगर से यमुना गर्ग की बातचीत
3: जी। और अब आगे बढ़ते हैं और करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन, सुनवाते हैं योगेंद्र सिंह निमचाना की आवाज़ में ये रागनी।

भोजन तक ना होए मोहसर, नमक नहीं आटे में। सर्दी लागे मरू जड़ाई, तन के कपड़े फाटे में। मेहबर से पानी टपके गर्मी ला।

किरसन से लाचारी कहिए बिल्कुल मार डांट नहीं, दो रोटी का करे सहारा ज्यादा धन की चाट नहीं। न्यू कहिए एक पड़ी झोपड़ी।

मुश्किल समय हिथावेगी पिया किरसन ने अजमाले भेंट में चावल ते दीजे निभ जाते परण निभाले ना मेवा मिसठान विदुर का साग समझ के खाले इन्हें साग समझ के खाले मारे भोजन के भी पड़ रे लाले मारे भोजन के भी पड़ रे लाले।

0: तो अभी आप योगेंद्र सिंह निमचाना से रागनी सुन रहे थे। और वंदना बहन, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, तो जैसा कि नाम से ही पता है,
1: जी
0: इससे कि धन धान्य की वृद्धि हो, यानी कम फसल उत्पादन करने वाले जिलों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पैदावार बढ़ाना
1: जी
0: ताकि उत्पादकता
1: बिल्कुल
0: बढ़े।
1: बिल्कुल। और फसल विविधीकरण में किसानों की

0: पारंपरिक खेती के अलावा अन्य लाभदायक और जलवायु अनुकूल फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना और खेतों तक सिंचाई की बेहतर सुविधा पहुंचाना और फसल कटाई के बाद भंडारण और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना, ये
1: बिल्कुल
0: सब हमारे
1: वंदना
0: किसान भाइयों
1: मैम।
0: के लिए हमारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, इससे किसानों को आसानी से कृषि लोन यानी ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि खेती के लिए ज़रूरी संसाधन जुटा सके।
0: जी बिल्कुल, और इस योजना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं कि 11 केंद्र मंत्रालयों और 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को एक साथ एकीकृत करके लागू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से देश में लगभग 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, जिन जिलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है वहाँ फसल विविधता का अभाव है और लोन लेने की सुविधा कम है, उन्हें इस योजना में विशेष रूप से शामिल किया गया है। तो इस योजना के बारे में अधिक जानकारी अपने क्षेत्र के वहाँ से ले सकते हैं आप। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो थी योजना की बात हमारे किसान भाइयों के लिए, और अब करवाते हैं मनोरंजन अपने भाइयों का व्हीकल गुजर की आवाज़ से ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे विकल गुजर से ये रागनी।
1: जी हाँ, और अब आपको ये देते हैं एक सूचना जो कि कल के फोन इन कार्यक्रम के बारे में है। फोन इन कार्यक्रम जो कि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लगातार चलेगा, और इसमें हमारे जो किसान भाई हैं अपनी कोई भी समस्या हो तो हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं सीधे फोन करके। हमारी जो कल का विषय है वो है गन्ना फसल में कीट नियंत्रण, और हमारे फोन नंबर हैं 2342-1082 और 2342-1083। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 01 जरूर लगाएं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम सजा कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 7 बजे को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट

परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारी सीफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनौ में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुन, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: वंदना बहन,
1: जी।
0: हम हाजिर हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ, योजना के बारे में बताएंगे और मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में।
1: बिल्कुल
0: इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों को गांव से जोड़ना। इसके तहत वैज्ञानिक किसानों को तकनीकी जानकारी और उन्नत कृषि विधियों से सीधे उनके खेत में प्रदान करते हैं ताकि पैदावार बढ़ सके।
1: बिल्कुल। और उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सीधा संवाद स्थापित करके जो किसानों के बीच जो फासले और वैज्ञानिकों के बीच में जो फासले होते हैं उनको कम करना,
0: बिल्कुल
1: सीधे किसानों से बातचीत करना है।
0: बिल्कुल वंदना बहन, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलाया जाता है और कृषि अनुसंधान के नए निष्कर्षों और तकनीकों को प्रयोगशालाओं से निकाल कर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल। और कृषि के क्षेत्र में होने वाले शोध, उन्नत किस्मों के बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों और उर्वरक प्रबंधन तकनीकों को सीधे किसानों से खेतों तक पहुंचाना है।
0: जी वंदना बहन, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरकों के उपयोग और आधुनिक खेतों के तौर तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है।
1: जी हाँ, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में तो बताया ही जाता है, और साथ ही साथ उनको बीमा और पीएम किसान योजनाओं के बारे में, जो योजनाएं किस सरकार ने चला रखी है हमारे किसान भाइयों को, सब्सिडी की, बैंक सब्सिडी के बारे में भी जागरूक करना है।
0: बिल्कुल, और वैज्ञानिक जो टीमें होती हैं गांवों को गोद लेती हैं और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करती है।
1: जी हाँ, समस्याओं के साथ किसानों को खेतों में आने वाले रोग, कीटों और मिट्टी की समस्याओं की पहचान करवा के वैज्ञानिक उसका समाधान भी निकालते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: तो इतनी सारी बातें होती हैं और तभी तो मेरा गांव मेरा गौरव कहलाता है।
1: जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई इसमें पूरा सहयोग करते हैं और वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का सीधा संवाद भी करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसका हल निकालने के बाद उसका प्रयोग भी करते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए हम अब आपको जानकारी सुनवाते हैं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपाय।
1: जी
0: डॉक्टर मोहन सिंह, मृदा वैज्ञानिक, KVK गौतम बुद्ध नगर से। तो
1: जी
0: आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: जानवर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कैसे बढ़ाएं और कार्बनिक पदार्थ का फसलों के उत्पादन में क्या महत्व है। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे

0: का जाता है और उत्पादन उसके अंदर बहुत कम होता है।
1: यानी जो फसलों के उत्पादन में इनका बहुत बड़ा योगदान
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कार्बनिक पदार्थ पहले तो हमारे खेतों में बहुत हुआ करते थे,
0: जी जी देखिए
1: लेकिन इसको बढ़ाने की क्यों आवश्यकता पड़ी?
0: सर, क्या होता है, पहले जो कार्बन पदार्थ इसलिए बहुत होते थे कि हमारे किसान भाई देसी खाद का प्रयोग करते थे,
1: जी
0: हरी खाद का प्रयोग करते थे और जैविक खादों का प्रयोग करते थे। अब क्या होता है कि अब रासायनिक खादों का बहुत प्रयोग करते हैं और सह फसली खेती नहीं करते हैं, मतलब उसमें फसल चक्र प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए
1: जी
0: कार्बन पदार्थ काफी हमारी मिट्टी के अंदर कम होता जा रहा है और इसी कारण से हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ रही है और हमारा उत्पादन भी काफी घटता जा रहा है।
1: तो इसका ये कोई मात्रा है कि ये कम से कम कितना होना
0: हाँ,
1: चाहिए?
0: बहुत अच्छा वाला सर। ऐसा है, देखिए मिट्टी के अंदर जब हमारे किसान भाई यदि अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं
1: जी
0: तो यदि 0.25 से लेकर के 0.45 तक तो होगा तो वो कम माना जाएगा उसे,
1: जी
0: और ये मान ले 0.5 से लेकर के 0.75 तक होगा तो हमारा कोरन कार्बन को मीडियम माना जाएगा, उसमें हमारी फसल हो सकती है,
1: जी
0: और हमारा 7.5 से एबव होगा तो हमारा
1: जी
0: उच्च माना जाएगा, मतलब हाई माना जाएगा, तो
1: जी
0: इसलिए उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ओरगन कार्बन को बढ़ाने के लिए काफी उपाय हमारे किसान भाई हम बता सकते हैं कि भाई ओरगन कार्बन हमारे मिट्टी में कैसे बढ़ाया जाए और उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए उपायों पे बात कर रहे हैं, तो
0: जी
1: कौन
0: जी
1: कौन से उपाय
0: हाँ
1: हैं,
0: सर,
1: कैसे
0: देखिए
1: बढ़ा सकते?
0: कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए मिट्टी में सबसे पहले तो हमको जो फसल के अवशेष होते हैं, किसान भाई क्या करते हैं कि जो फसल अवशेष होते हैं, जैसे धान की हम पराली की बात करें या गन्ने के हम पत्ते की बात करें या किसी डंठल की बात करें, अधिकांश किसान भाई खेत में ही जला देते हैं और जलाने से हमें काफी नुकसान होते हैं। जो हमारे मित्र कीट होते हैं,
1: जी
0: जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, वो भी हमारे जल के नष्ट हो जाते हैं, जो भूमि को अंदर अवशेषों को सड़न गलाने में काम करते हैं, वहाँ मित्र कीट जल जाते हैं। पहली बात तो मेरे किसान भाई से अनुरोध ये है कि जो फसल के अवशेष हैं
1: जी
0: उनको कभी ना जलाया जाए, खेत में ही उनको पलटा जाए, खेत में ही सड़ा गलाया जाए, जिससे कि जीवांश कार्बन हमारी बढ़ोतरी की तरफ रहता है। जो किसान भाई जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए फसल के अवशेष जैसे गन्ने की पत्ती, धान का पुआल और डंठल आदि को खेत में ही सड़ा दे गला दे तो हमारा जीवांश कार्बन बढ़ोतरी की तरफ रहता है। अगले पॉइंट भी कह सकते हैं जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए,
1: जी
0: ये तो फसल अवशेष की बात हुई। दूसरा, पहले किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करते थे जिसमें हरी खाद में ढेंचा, सनई
1: जी
0: और मूंग, लोबिया। अब ऐसा स्तर बदल गया है सर, देखिए कि आप किसान भाई फसल को लगातार करते रहते हैं, वो फसल चक्र प्रयोग नहीं करते और ढेंचा प्रयोग नहीं करते। जैसे अभी हमारा गेहूं कटा था रबी में, किसान भाई यदि ढेंचा बो देते उसमें या सनई बो देते 40 दिन की अवस्था में, जब फूल आने से पहले उसको हम खेत में पलटाई कर दें तो हमारा जीवांश कार्बन बहुत अच्छा बढ़ेगा, ऑर्गन परसेंट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जिस मिट्टी का ऑर्गन परसेंट 0.25 है, हमने मिट्टी चेक कराया, फिर उसके बाद पलटाई के बाद सर मिट्टी चेक कराते हैं तो हमारा पक्का 0.57 तक हमारा ऑर्गन कार्बन पहुंच सकता है, केवल ढेंचा और सनई से ही।
1: जी ये तो
0: तो
1: बात हरी खाद की रही,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: गोबर की खाद
0: जी
1: है,
0: सर,
1: कंपोस्ट है, और केचुआ खाद
0: हाँ
1: है,
0: वर्मी
1: वर्मी
0: कंपोस्ट है। जी
1: कंपोस्ट
0: जी
1: है,
0: जी
1: इसका क्या
0: हाँ
1: योगदान
0: सर,
1: है?
0: देखिए क्या है कि किसान भाई अब हमारे देसी खाद से बहुत अलग होते जा रहे हैं।
1: जी
0: कोई कहते हैं कि जी पशुपालन का मैं इसको कहाँ से को देसी खाद आएगा और केचुआ खाद में ये है। वर्मी कंपोस्टर एक ऐसा कंपोस्ट है कि जो भी यार वर्मी होते हैं वो जो भूमि के जो खाद के अंदर एक इस प्रकार का उसको कूड़े कबाड़े गला करके इस प्रकार का बना लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं कि उसके नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने अपना सोयल टेस्ट में लेबोरेटरी टेस्ट किया था वर्मी कम्पोस्ट को,
1: जी
0: तो उसमें 1.5 से लेकर के 2% तक नाइट्रोजन था और 1.5% फास्फोरस और करीब 1.25 उसके अंदर पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट काफी थे उसके अंदर। तो वर्मी कम्पोस्ट ये है, और देसी खाद जो फार्मी और मैनोर FIM कहते हैं उसको भी हम सड़ी हुई खाद बरसात के बाद 6 महीने के बाद जो जैसे बरसात निकल जाए उसके बाद यदि हम खेत में डालते हैं तो जीवांश कार्बन सर अपने आप ही बढ़ता जाता है। मैं किसान भाई ये अनुरोध करूंगा कि जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फसल में आप कम से कम, नहीं तो देसी भाषा में बात करें, 1 ट्रॉली पर बीघा अधिक हमारे किसान भाई डाल के चलें
1: जी
0: तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन रवि की फसल में डालें, बरसात के बाद से धान है
1: जी
0: अपना डाल करके उसमें डालें, रवि वाली फसल में
1: जी
0: जैसे गेहूं में डालें,
1: उसका क्या फायदा
0: उसका
1: होगा?
0: सर ये फायदा है, जैसे भी बरसात हुई आपने देखा होगा बरसात हो रही है
1: जी
0: अभी, हम जुलाई के महीने में डाल देंगे देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट ऑयल के अंदर, तो जो बरसात का जो पानी आ रहा है, भयंकर बारिश आपने देखा अभी बरसात काफी हुई है नेक्स्ट वीक में, तो उस बरसात के पानी से जो हमारा देसी खाद के जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो घुल जाएंगे, उसमें सॉल्युबेंट हो जाएंगे
1: जी।
0: और जो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो ओवरफ्लो पानी होकर के बह करके और उसके साथ हमारे जो
1: पोषक तत्व
0: है वो बह करके सर चले जाएंगे और हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारा जीवांश कार्बन बढ़ नहीं पाएगा और हमारे फसल को मिल नहीं पाएगा।
1: यानी जो हमारी देसी खाद है उसको लगाने का सही समय जो हमारी रबी वाली फसलें
0: सर्दियों में अक्टूबर वाली, जो अक्टूबर हम फसल बोते हैं।

0: जैसे गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, आलू बोते हैं, उसमें लगाया जाए तो वो हमारा पूरी साल के लिए हमारी न्यूट्रेंट विद्यमान रहे, उसमें हमारा कोई ओवरफ्लो पानी नहीं होता है और टेम्परेचर भी सर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अधिक टेम्परेचर से भी उसकी जो नाइट्रोजन होती है फर्टिलाइजर में से, देसी खाद में से, वो बाष्पीकरण उड़ करके और वायुमंडल चली जाती है, जो हमारे पौधों को नहीं मिल पाते। टेम्परेचर 45-46 हो जाता है, उससे भी नाइट्रोजन हमारी वाष्पीकृत हो जाती है, और सर्दियों में टेम्परेचर नहीं होता तो हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और सारे पोषक तत्व फास्फोरस पोटास उस खाद से मिल जाती है और हमारे जीवांश कारण बढ़ने की तरफ रहता है।
1: जैसे आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि किसान भाई खेत को आराम नहीं करने देते, लगातार एक न एक फसल लेते रहते हैं, अगर उसमें फसल चक्र अपनाएं क्या कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकते
0: हाँ
1: हैं?
0: बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा है। एक तो फसल चक्र अपना है और फसल चक्र सिद्धांत अपना है।
1: सिद्धांत क्या है?
0: सिद्धांत का सर ये कहते हैं, फसल चक्र तो ये कहते हैं कि हमने इस समय हमने धान बोया
1: जी,
0: तो अगली बार हम धान के सीजन में धान न बो करके दूसरी फसल बोए, जैसे मक्का बोए
1: कोई दलहनी फसल बोए।
0: या दलहनी फसल बोए, ठीक है। फसल चक्र को उसी खेत में आने वाली फसल बदल बदल के बोए। और सर फसल चक्र सिद्धांत कहते हैं कि आज हमने धान बो रखा है,
1: जी
0: अधिक पानी चाहने वाली फसल बो रखी है, तो अगली फसल धान के बाद बोएंगे तो कम पानी चाहने वाली, कम खाद चाहने वाली फसल बोनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अधिक जुताई वाली, अधिक खाद चाहने वाली फसल बो रखी है तो हम कम जुताई वाली, कम खाद चाहने वाली फसल बोए, जैसे दलहनी फसल, सरसों। इस प्रकार की हम फसल बोएंगे तो हमारे जीवांश कार्बन अपने आप ही एवं रहता है। इसको हम बोलते हैं फसल चक्र के सिद्धांत।
1: जैसे आपने दलहनी फसल का
0: जी
1: जिक्र
0: सर,
1: किया, तो दलहनी फसलों द्वारा किस तरीके से कार्बनिक पदार्थ बढ़ाया जा
0: हाँ,
1: सकता है?
0: दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन को पर्याप्त करने के लिए, स्थिर करने के लिए राजुम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण उपस्थिति में वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके और हमारी जमीन की पल्स क्रॉप की जड़ों में फिक्सेशन कर देते हैं, और उससे हमारा जब नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो खेत में हमारा नाइट्रोजन पूर्ति हो जाती है। और दूसरा सर, उसके अंदर नेडुज होते हैं, उसकी जो जड़ होती है और उन पत्तियां होती, उनको जो हमारे भूमि के अंदर मित्र कीट है वो उनकी पत्तियों को और जड़ को गला सड़ा करके डिकम्पोज कर देते हैं।
1: जी
0: अपनी पत्तियों को, जड़ को गला करके बैक्टीरिया एक ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस एज ए ऑर्गेनिक कार्बन। जिस भूमि के अंदर ह्यूमस होगा अच्छा, तो ब्लैक कलर की सॉइल होगी, काले कलर की होगी, कॉटन सॉइल होगी, तो समझ लो जो ब्लैक कलर की सॉइल है उसमें हमारे ह्यूमस का अच्छा पर्याप्त मात्रा है। जो ह्यूमस है तो ह्यूमस एज ए ऑर्गेनिक कार्बन।
1: तो जिसे बहुत लोग जिक्र करते हैं जैविक खेती, प्राकृतिक
0: जी जी
1: खेती,
0: जी जी
1: क्या इसके द्वारा भी कार्बनिक पदार्थ बढ़ाया जाए?
0: हाँ सर, जैविक खेती प्राकृतिक खेती क्या होता है, जीवों के अंश से बनी हुई खाद को जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती जो हम जीवों के, जैसे हम गोबर है जीव के अंश से बना हुआ है,
1: जी
0: ढेंचा है जीवों से बना हुआ है, बर्मी कंपोस्ट जीवों के अंश से बनी खाद जैविक खेती, तो उसके प्रयोग करेंगे उससे जीवांश कार्बन बढ़ेगा हमारा। जैसे प्राकृतिक खेती में बात करते हैं, प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घनजीवामृत, ये क्या प्राकृतिक अव्ययों से बनाए जाते हैं, जैसे देसी गाय का गोबर और गाय का मूत्र पेशाब, इसको यूज करते हैं। यदि खेत में देसी गाय का गोबर डालेंगे तो देसी गाय के गोबर में काफी मित्र कीट होते हैं, काफी लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं गोबर के अंदर, और भूमि में जाकर के वो उन कीटों को और बढ़ावा देते हैं जो हमारे मित्र कीट है। जैसे हम जीवामृत डालें और जीवामृत को सर यदि हम पानी में मिला करके सिंचाई के साथ यदि प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर काफी लाभदायक बैक्टीरिया हो जाते हैं, और लाभदायक बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया पर जाकर के और बढ़ा देते हैं अपने बैक्टीरिया को, अपने परिवार को बढ़ा लेते जमीन में। जब परिवार को बढ़ा लेते हैं तो हमारे बैक्टीरिया और जो हमारे जो फसल अवशेष है उनको डिग कर देते हैं, गला सड़ा करके बैक्टीरिया जीवांश कार्बन बढ़ाने में सक्रिय हो जाते हैं और हमारी मिट्टी उत्पादन करने के लिए सक्रिय हो जाती है उत्पादन बढ़ाने में। यदि हम इस जीवामृत घनजीवामृत डालते हैं
1: जी
0: तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, भूमि के अंदर जो छिद्र होते हैं उनको सोखने की क्षमता, भूमि के अंदर पानी रोकने क्षमता भी सर बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी मिट्टी को पार्टिकल्स और पार्टिकल भी मजबूत हो जाते हैं, जो हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है और हमारी फसल करने का उत्पादन देती है, और मिट्टी हमारी ऊसर की तरफ से लेकर के एसिडिटी तरफ बढ़ती है, हमारी मिट्टी अम्लता और क्षारीयता को छोड़कर नॉर्मल मिट्टी हो जाती है।
1: जी, जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, कि
0: जी
1: जैसे सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड
0: सर
1: चलाया,
0: सर
1: तो जिसके द्वारा किसानों को पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कितनी है, अन्य पदार्थों की कितनी
0: जी जी जी
1: मात्रा
0: जी
1: है जो हमें फसल उत्पादन के लिए जरूरत है। तो सरकार द्वारा कोई ऐसी और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके द्वारा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जा सके?
0: सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना चला रखी है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मतलब है कि किसान भाई अपनी मिट्टी को लेकर के किसी नजदीकी प्रयोगशाला में जाकर चेक करा। जैसे आजकल में आप देख रहे हो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है और वहां पर मिट्टी जांच करने प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में किट रहती है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व और बड़े पोषक तत्व जांच करती है, उसमें ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कितना जीवांश कार्बन मौजूद है, कितने हमारे पीएच मान हमारी मिट्टी का, कितने हमारी मिट्टी की विद्युत चालकता है, कितने हमारे मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे बोरान है, क्लोरीन है, जिंक है, जस्ता है, फेरस है, कितना है। यदि किसान भाई इस

0: हेल्थ कार्ड स्कीम का फायदा उठाएं और कृषि विज्ञान केंद्र की लेबोरेटरी में या हमारे प्रत्येक जनपद में कृषि विभाग की तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होती है, वहाँ जांच करा लें, तो उसमें वहाँ के जो प्रभारी लिखेंगे कि जीवांश कार्बन कितनी परसेंट है। यदि हमारी मिट्टी के अंदर जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा उस पर यदि हमारा 0.57% कार्बन है, तो सर ये कहने का मतलब ये किसान वाइज कहना चाहूंगा कि उसमें हम प्रत्येक फसल को बो सकते हैं
1: जी।
0: 0.57 यदि परसेंट हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवांश पदार्थ यदि कोई वहाँ प्रवाह लिखते हैं मिट्टी में, तो प्रत्येक फसल हो सकती है। और यदि 0.25 है ये तो उसमें बढ़ाने के लिए हम काफी मात्रा, मैंने बताया, हरी खाद प्रयोग करें, सनी ढांचा प्रयोग करें और बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करें, फसल अवशेष को ना जलाएं, उसी में गलाएं सड़ाएं, और मल्चिंग का भी एक बहुत अच्छा स्कोप होता है सर। और एक और जीवांश कार्बन में एक और होता है कि मैं किसान भाई कर कम जुताई करें,
1: उससे कैसे?
0: हाँ, कम जुताई से क्या होता है, किसान भाई आपने देखा बहुत सारे जुताई करते रहते हैं
1: जी,
0: तो जो भूमि के अंदर विद्यमान नाइट्रोजन है वो तुम्हारे तत्व है, वो अधिक जब पलटाई करते रहेंगे तो वो ऊपर आती रहती है नाइट्रोजन, ठीक है, तो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया तो मर जाते हैं और नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो डस्ट हो जाते और उड़ चली जाती है, जो हमारी भूमि से निकल जाती है। एक मैं टेक्निक किसान भाई कहना चाहूंगा कि बहुत कम जुताई करें, जहां में 4 जुताई आ सकता है वहां पर 2 जुताई,
1: मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ना करें,
0: लास्ट में अनुरोध यही करूँ किसान भाइयों से
1: जी
0: कि फसल के अवशेष ना जलाएं, तो यही सर किसान भाई से मेरा अनुरोध था
1: जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बताया और किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वो मृदा में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उसको बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करें और उसके साथ साथ जो उनके अवशेष हैं फसलों के उनको जलाएं नहीं, उनकी आप कंपोस्ट खाद बना लें, उनको सड़ा गला के मृदा में पुनः अपने खेत में मिला दें, आपके मृदा का कार्बन पदार्थ बढ़ेगा और आप जो भी फसल लगाएंगे उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा
0: जी।
1: डॉक्टर मोहन सिंह जी आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपाय, डॉक्टर मोहन सिंह जो मृदा वैज्ञानिक हैं गौतम बुद्ध नगर में, उनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: तो वंदना बहन अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं तेजवीर विधुड़ी से ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये उपदेश तेजवीर विदुर की आवाज़ में। और देखिए, जैसे कि कुसुम बहन, हम सबको पता है कि भाई जुलाई माह में जो हमारी फसलें होती हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी होती है, और तो खेतों में जो जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें और समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार हटाते रहें, और बारिश का तुरंत बाद कीटों को रोगों की निगरानी करते रहें, और साथ ही साथ यूरिया को एक साथ न डालने के बजाय किस्तों में डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, तो इस तरह आप अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर जैसे मानसून की सक्रिय फसलें हैं, जो लोग खरीफ फसलें हैं जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और सब्जियां, ये बहुत ही अहम होती हैं, और इनकी अपनी फसलों को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए, बम्पर पैदावार पाने के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, ये तो हुई जानकारी। तो जैसा कि हम आपका मनोरंजन करा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना कि वंदा बहन, ये ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, जितना भी
0: जी
1: हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए ताकि उसका फल हमें मिले।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसा ही कुछ उपदेश है, थोड़ी सी जिंदगानी जगत मुसाफिर, सुनते हैं सोमपाल सिंह से।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे सोमपाल सिंह की आवाज़ में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम है।

0: संपन्न होता है सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गज़ल कव्वाली।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

उमर अकबर एंथोनी में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को बहुत ही खूबसूरत कव्वाली के साथ। और ये जो इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गज़ल कव्वाली, तो इसमें एक गज़ल हम आपको और सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में, जो हमने लिया है फिल्म नाम से। गायक कलाकार हैं पंकज उदास और साथ ही गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: इसी गज़ल के साथ ये गज़ल गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर नालों की सफाई की स्थिति की समीक्षा की गई। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।
6: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
5: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
7: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक

0: अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा विस्तार से हुई। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं या अपुष्ट सामग्री पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली के 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया, जिससे 15 लाख लोगों को राहत मिल सके। श्री बिधोड़ी ने कहा कि वर्ष 2010 में जिन क्षेत्रों को ओजोन में डाला गया उनमें दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और डीडीए द्वारा नियोजित ढंग से बनाई गई मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांव को भी ओजोन क्षेत्र में डाला गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को ओजोन से हटाने की मसौदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी। श्री बिधोड़ी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस सभी क्षेत्रों को ओजोन से हटाया जाए, जिससे उन्हें नियमित किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम किया जा सके।
2: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत यदि कोई वाहन मालिक अपना BS4 या उससे नीचे का हल्का मालवाहक वाहन को स्क्रैप करा के वैसा ही नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 10 वर्षों के लिए 100% मोटर वाहन कर में छूट और 100% पंजीकरण शुल्क माफी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज में 5% की सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% की छूट और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एक मुश्त लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो लाभार्थी को 10 वर्षों के लिए 50% मोटर वाहन कर में छूट, ब्याज में 5% की सब्सिडी और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एक मुश्त लाभ दिया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना में पुरानी BS4 या उससे नीचे की बसों को भी शामिल किया गया है। इन बसों को भी मालवाहक वाहनों के समान सभी लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को एक वर्ष से अधिक समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी की देनदारियों में भी राहत दी जाएगी। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मॉनसून के लिए राजधानी की तैयारियों और शहरी बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने पानी जमा होने वाले चिन्हित हॉटस्पॉट पर क्षमता तुरंत बढ़ाने और दिल्ली में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल हैवी ड्यूटी पंपों को हर समय चालू रखने, लोगों की प्रतिक्रिया और जमीनी हालात की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी

0: राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर भी बल दिया। श्री संधू ने जानकारी दी कि पानी जमा होने वाले चिन्हित स्थानों की संख्या वर्ष 2024 में 194 से घटकर वर्ष 2026 में 34 रह गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास सभी संबंधित विभागों की लगातार प्लानिंग, तालमेल के साथ काम करने और निरंतर मॉनिटरिंग के असर को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज आनंद विहार के अंतर्गत योजना विहार में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निगम ने कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि हाल ही में बिछाई गई 900 मिलीमीटर व्यास वाली ख्याला मेन लाइन को दो जगहों पर जोड़ने के काम के कारण पंजाबी बाग, नारायणा, इंद्रपुरी और मोतीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज प्रदेश के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अनुमति और विचार विमर्श के बाद जारी सूची में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। श्री मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश संगठन में 10 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित ये संगठन केंद्र और दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी तथा विकसित दिल्ली और विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम ने आज जवाहर नगर क्षेत्र में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को समयबद्ध और नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ट्रैफिक पाठशाला आयोजित की। ये कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आज मादक पदार्थ नष्ट करने के 10वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 1450 किलो के से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 897 करोड़ रुपए है। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पुलिस ने बताया कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रग फ्री भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करने और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने के बाद शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल असेंबली में ऐतिहासिक बम विस्फोट कर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले बटुकेश्वर दत्त का अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर देशवासी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में

पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है लोफर और इसे स्वरों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो आइए सुनते हैं अपने समय का बहुत ही खूबसूरत गीत।

फिल्म तेरे नाम में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीत रचना थी समीर की और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म आरजू में, और ये जो गीत रचना है सागर आर्ट कॉरपोरेशन की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम, और साथ ही गीत रचना है देव कोहली की और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गाना। फिल्म का नाम है सूरज, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीत रचना है वीनस पिक्चर्स की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, और इसको आवाज़ दी है मुकेश ने। गीत रचना है हजरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं मुकेश और कंचन को फिल्म धर्मात्मा में। गीत रचना है इंदिवर की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी संगीत से संवारा है शिव हरि ने।

सिलसिला फिल्म के इसी गीत के साथ ये आज का गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को

0: हैं कुछ ही पलों में। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच

0: आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मॉल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मॉल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के मॉल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मॉल्डोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मॉल्डोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना

0: दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई है, जिससे पिछले 2 रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल बहुत शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब खबरें तफसील से। मॉनसून इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई करती रहीं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हाल ही में फौत हुए अपने 6 साबिक अराकीन पार्लियामेंट को ताजियत पेश करने के साथ हुई। ऐवान ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। तहम वक्फे सवाल की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपोजिशन अराकीन नीट मामले पर नारेबाजी करने लगे। पहले स्पीकर ओम बिरला और बाद में प्रिसाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया की जानिब से ऐवान में नज़्म व नस्क बरकरार रखने और कार्रवाई चलने देने की बार बार अपीलों के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्रवाई में भी बार बार रखना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 9 मुंतखब अराकीन की हलफबरदारी से हुई, जिसके बाद 4 साबिक अराकीन के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामला और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया है कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में ताउन करती है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगमील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिनमें खलाई शोबा शामिल है, हर भारतीय को फ़ख्र का एहसास कराया है। आलमी महाजाराई खासतौर पर मगरबी एशिया का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने तवानाई, खाद और दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई से मुतालिक चैलेंजों का कामयाबी से सामना किया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इन चैलेंजों के बावजूद मुल्क ने 7.7% की शरह तरक्की दर्ज की है, जो उसे दुनिया की तेज़ी से तरक्की कर रही अहम मईशत बनाता है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि मानसून इजलास मुल्क की तरक्की के सफ़र को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मरकजी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज़ आज सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि यह मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती ज़बानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सहपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना ख़त्म करने और इंतज़ामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमन व अमान बरकरार रखने, तहमुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ ताउन करने की अपील की, ताकि अमन व कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तेलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। जनाब राजीव रंजन ने शहरियों से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करने की भी अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि एहतजाज कर रहे अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन इल्ज़ाम को बिल्कुल गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को खबरदार किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जाँच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी,
जब

0: प्रदेश हुकूमत इस मामले में एसआईटी जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल की आमिजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज़्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमेजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मेयारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमो के कई शोबों में इश्तराक को वसूत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technologies, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement, art manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in renewable energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: Moldovan companies for trade and business. We remain committed to fostering a transparent, predictable and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मसनूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाऊ में स्टेफन शेल माहरे शीस फंट यादगार पर गुलाए अकीदत नज़र किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासर राजौरी और पुंछ ज़िलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ ज़िलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नज़र सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ दोनों सरहदी ज़िलों में बारिश से मुतालिक वाक़यात में जान गंवाने वालों के हर कुंबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आज की शदीद बारिश ने पुंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाई को काफ़ी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दिगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में आज देर रात वक्फे से बारिश होती रही, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थीं। इस वजह से तलाश और बचाव की कार्रवाई में सख्त मुश्किलात पेश आईं। मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। NDRF, SDRF, जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज

0: में हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की अहम सड़कें फिर से खोल दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में पानी सप्लाई की बहाली का काम जारी है। महकमे मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके मद्देनज़र ज़िला इंतजामिया ने लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में भी अगले दो दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार जजायर में भी कल गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में आज हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में आम तौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक कल राजधानी दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री, जबकि कम अज़ कम दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफा देने के बाद शाह चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नहैम को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात, आलमी सतह पर जायजे और टेक्नोलॉजी की मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने न सिर्फ कौमी सतह पर अपने तयशुदा अहदाफ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया, बल्कि आबोहवा की तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए दीगर शोबों में भी अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमेटिक्स के अलावा प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मजामीन में गैर मामूली जानकारी फराहम की है, जो कि एक अजीम कारनामा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे दो दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम

0: और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में संधि लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 0117171717, 0112331 4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है।
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेज होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेज होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी ज़रूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फ़ोन करेंगे और उनके मन में कोई जार बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं। रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में हैं जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज़ से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपये वहाँ शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए,

0: कैपिटल गेन है, आपने शेयर्स बेचे हैं, प्रॉपर्टी बेची है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। और आपने कोई किराए पे मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए इसमें ज़रूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने
1: जी
0: ज़रूरी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कागज़ अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज़ होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहाँ से ली है।
1: जी
0: तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा रामजी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और एफडी पर अगर टीडीएस कटता है तो आईटीआर इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका टीडीएस जो है एफडी
1: जी
2: के ऊपर वो 40,000 रुपये तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है। लेकिन उसके बाद जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है,
1: जी
2: तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं।
1: जी और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अमित झा। जी अमित जी
3: हाँ नमस्कार
1: नमस्कार।
3: सर कोहली सर को नमस्कार।
0: हाँ,
3: सर
0: नमस्कार अमित जी,
3: सर
0: नमस्कार।
3: मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा, जी।
3: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो एक्स वाई जेड,
0: जी
3: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ।
0: जी
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है जैसे 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूँगा
1: जी
0: जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूँ, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है
1: जी
0: उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है। हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और रिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप वो जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई टीडीएस कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है या डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर ज़रूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं अमित, अगर आपका 12 लाख रुपये से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: चलो जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए यह होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज इस शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं। और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं।

0: हम लोग भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में एक संशय
1: डाउट
0: रहता है,
1: रहता
0: डाउट
1: है।
0: रहता है कि
1: जी
0: कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए,
1: जी जी
0: तो उस चीज में
1: और मैं
0: डिडक्ट हो
1: उसी
0: जाए
1: पे आ रहा
0: उससे।
1: था। तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह
0: जी
1: सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये है कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
0: जी एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन जी। मकसूद जी
2: नमस्कार सर जी। नमस्कार
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
1: जी हुसैन साहब बताइए।
2: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो
1: जी
2: उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है,
1: जी
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुंच जाता है जी, अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
1: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा,
0: जी
1: तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी। तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फर्द मैं
0: जी
1: ठीक समझ रहा हूं अगर,
0: बिल्कुल
1: तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको, आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है? ये लोगों के पैसे हैं, आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
0: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान जी। रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है,
1: जी,
3: तो क्या 12 मतलब 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
1: जी
3: इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर। थैंक यू सर।
1: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या ITR के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, ITR के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
1: और मैं आपकी इजाज़त हो फरहत, तो इसमें कुछ अश्विनी इजाज़त दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में ला के और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं। जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है

0: बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना, वो मतलब बहुत ज़्यादा एडमेंट होते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता
0: आप
1: दें।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है
2: जी,
0: आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस
2: आप
0: बता
2: लोगों
0: रहे
2: से
0: हैं।
2: हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से एनपी सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: मेरा नाम एनपी सिंह है, मैंने एब्रिविएशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके।
3: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
3: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
0: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये है, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है। अब की बार जो जैसा लोग बता रहे हैं, तो न्यू रिजीम उनके लिए जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है NPS, उसको छोड़ के बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई हैं। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको यह सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
2: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं।
1: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ।
2: जी,
4: और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं, और मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे

0: उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहाँ पर भी इनकम है फरहद, वहाँ
1: जी
0: पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
1: जी। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं
0: जी
1: और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
0: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है
1: जी
0: और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए,
1: जी
0: क्योंकि एनजीओ फर्क दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है
0: एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है,
1: जी
0: आप तो जनसेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत ज़रूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी
1: हाँ
0: तो
1: यही
0: अब
1: बात
0: क्या
1: है।
0: होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं,
1: जी
0: पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी है तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: जी शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी,
2: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर की
0: सर,
2: हसीन
0: हमारा
2: वादी
0: भी
1: जी।
0: सब प्रेम
1: आपको भी
0: आपके
1: बहुत बहुत
0: पास।
1: नमस्कार
2: सर, सीधा सवाल मेरा राणा जी से है। राणा
0: जी
2: जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है या क्या, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हो एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से, रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्ज होता है किसी की गलतियां
1: गलती
0: निकालना।
1: निकालना
0: और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया।
1: जी
0: देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये
1: जी
0: हृदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए
1: जी
0: जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय
3: मैं
1: अपना जाया
3: ऐड
1: नहीं
3: करूंगा
1: जाने
3: इसमें एक
1: जी।
3: कि कोनी जी, अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती,
0: नहीं,
3: तो वो
0: उसमें उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता
3: नहीं
0: है।
3: ठीक करता और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता,
0: नहीं
3: तो
0: नहीं वो हो
3: उसको,
0: मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी
3: हाँ
0: इनकम
3: फिगर
0: की,
3: गलत है, लेकिन
0: तो
3: जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप
0: काश
3: अपने,
0: ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल
1: जी
0: कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर, मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत
1: हाँ,
0: लंबी है।
1: ध्यान से भरिए अपनी
0: जी
1: हर एक एक चीज़
0: जी
1: डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज़ डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए।

0: हैं करनाल से अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्कार।
1: सभी पैनल को नमस्ते।
2: नमस्कार
3: नमस्कार।
1: सर पिछले साल जिस यूजर आईडी तो यूजर आईडी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया।
2: तो
1: जब अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आईटीआर भरने
2: वाला। तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम
0: जी।
2: होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं। आप क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है उसके फोन नंबर भी हैं, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण पर, ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा, या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
0: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
2: अरे अरे रवि जी, आप क्यों क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का, मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा, पेनल्टीज बहुत भारी है। मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
0: और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
2: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फरद ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फील्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर करें।
0: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करें 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए
0: जी। और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स के आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया।
2: शुक्रिया।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, यह आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाई फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को

अपने छह पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेन दला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा

0: अल्थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1।
2: प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण प्रण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने के लिए। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं, और उसमें से 3 लाख हजार ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्व

0: सभी मान्य सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स, अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस वक्त रात के 10:13 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं काशिफ अहमद की गज़लों को हमारे कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त रात के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग रंजन। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं मैत्री मजुमदार का गाया राग रागेश्री। हारमोनियम पर संगत दी है कौशिक मित्रा ने और तबले पर है सुमित रामडोहकर।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत मैत्री मजुमदार का गाया राग रागेश्री। हारमोनियम पर संगत दी थी कौशिक मित्रा ने और तबले पर सुमित रामडोकर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र,

0: दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
3: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पास भर भर के मेल्स आ रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं संदेशों को। पहला संदेश आया है नवी हसन का, और इनके साथ है नबी शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ, रसीद वारसी। अगला जो संदेश है वो है मल्होत्रा टीडी मोहाली, टीडी मल्होत्रा जी का, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगला जो संदेश है वो है गगनदीप का, और इनके साथ हैं डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। अगला संदेश जो आया है आशीष कुमार का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बरेली से, और इनके साथ है बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी। अगला संदेश जो है वो है जसबीर सिंह का, और इनके ये हमें लिख रहे हैं हरियाणा से, निमनाबाद जिला। अगला जो संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का, और इन्होंने बहुत ही अच्छे गीत की फरमाइश की है। और जो अगला संदेश है वो है जाकिर मुलानी का, और इनके साथ हैं सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, सुमैया मुलानी। हमें लिखकर भेज रहे हैं, कहाँ से इन्होंने भेजा है इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा गीत जो डिमांड किया है। फ़िलहाल सुनाते हैं इनकी ही भेजी हुई फरमाइश को, सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, अगला जो संदेश है वो राजेश मेहरा का है। इन्होंने हमें लिखकर भेजा है ग्राम बकानी खुर्द राजस्थान से, और इनके साथ हैं नंद किशोर, विनोद अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य एवं समस्त ग्राम वासी। अगला संदेश है वो है सतीश अनेजा जी का, और इनके साथ है बिमला अनेजा, और इन्होंने गीत की फरमाइश की है। अगला जो संदेश है वो है पूनम गजनेजा का, और इनके साथ हैं विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित, सुदेश, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से। अगला जो संदेश है वो नारायण खर्चे का है, और एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हमें लिख रहे हैं, और इनके साथ है कुमारी देविका चौधरी, और ये भेज रहे हैं कि हमें कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए। अगला संदेश जो है वो किशन वंजनी का है, और इनके साथ जो है अगला जो संदेश है वो नारायण जी का है। इनका नाम ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसलिए कृपया हमें बार बार भेजने से हमारे जो अन्य श्रोताओं का नाम है वो हमसे मिस हो जाता है। अगला संदेश है दिलावर खान का, और इनके साथ हैं एलिजा, नायाब और लड्डू, और इन्होंने बहुत ही अच्छा हमें संदेश भेजा है। दोस्ती एक रिश्ता नहीं, दिल का सबसे खूबसूरत एहसास है, जहाँ स्वार्थ नहीं सिर्फ अपनापन होता है। सच्चा दोस्त वही जो हर साल में साथ निभाए। दोस्ती का प्यार हर रिश्ते से खास होता है। बहुत ही अच्छा अच्छी बात कही आपने दिलावर जी, और आपकी बातों को हम सभी अपने जहन में रखेंगे। अगला जो संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का, और अगला संदेश जो है अहमद फूल वाले का है, और इनके साथ हैं इनके अन्य साथी जो कि हैं दुखनी सदफ, आरजू, जूही इकबाल, फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, बिटिया आमना, नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फूल वाले, और समस्त फूल वाले फैमिली ये हमें लिखकर भेज रहे हैं फिल्म सिटी मुंबई से।

श्रोताओं, अगला संदेश जो आया है वो शीशपाल वर्धन का आया है और अगला संदेश भूषण खेरा जी ने हमें लिखकर भेजा है और इनके साथ ही विशाल खेरा, विष्णु खेरा, खेरा शहलानी और तिवांशी खेरा, वानी खेरा। अगला संदेश है दिलावर खान का और इनके साथ ही इनकी बेगम हसीना बानो जी। और अगला जो संदेश है वो रियासत हुसैन जी का है, इनके साथ है नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, सबरीन परवीन, माहिरा नूर, और यह हमें लिखकर भेजा है जसपुर उत्तराखंड से। अगला संदेश जो है वो मोहाली चंडीगढ़ से है, टीडी मल्होत्रा का, इनके साथ है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह। और कालका से लिखकर भेज रहे हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अगला संदेश है फागुराम यादव का, इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संबलपुर कांकेर से। और अगला संदेश है हाजी मजहर का और इनके साथ है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरपुर गंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। अगला जो संदेश है वो है सतीश अनेजा का और इनके साथ है बिमल अनेजा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से। शंकर लाल जायसवाल हमें लिखकर भेज रहे हैं नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से, और इनके साथ है गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओ, अगली जो फरमाइश आई है वो ताज मोहम्मद की है और इनके साथ है गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आर कुमार हमें लिखकर भेज रहे हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ये बोल रहे हैं कि हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। अगला जो संदेश आया वो है रमन वर्मा का, इनके साथ है अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और ये हमें हनुमानगढ़ फाजिलका से लिख कर भेज रहे हैं। मल्होत्रा टीडी मोहाली हमें लिख कर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से। और जो अगला संदेश है वो है जावेद अख्तर का और इनके ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मुबारकपुर आजमगढ़ से और इनके साथ हैं बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा अफरीन, शमीम अख्तर। और मोहम्मद कमर हमें लिख कर भेज रहे हैं गुन्नौर से, आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। और जो अगला संदेश है रास क्रिएशन का और इनके ये हमें लिख कर भेज रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल,

राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पी एस नाहवकर जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है निर्मला विशाल नाहवकर, और महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशिफ आशीष आशीष मुहरकर, और अगला जो है संदेश वो है स्वीटी जोरा का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से, इनके साथ है सुखविंदर सिंह जोरा।

श्रोताओं, अगला संदेश आया है जगमोहन सिंह प्रजापत का और इनके साथ है श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से। अगला संदेश जो है नासिर शेख का है और इनके साथ ये कोई भी गीत सुनना चाह रहे हैं और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। इनके साथ है नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से, जुनैद मुजावर, साहिबा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। अगला संदेश जो है नवी हसन जी का है, इनके साथ है शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी। और अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार का, डॉक्टर रमेश कुमार जी का, और इनके साथ ही गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू। और अगला जो संदेश है दिलावर खान जी का है और फारूक अली खान जी ने हमें भेजा है संदेश, और इनके साथ है पूरा अब्बासी परिवार, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शांति नगर सोनीपत से।

तो अगला जो संदेश है वो राजकुमार डूडी का है, ये मिलकर भेजे हैं गांव फ्रांसी हिसार से, और इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अगला संदेश है मोहम्मद कमर का और आदिल कमर गुन्नौर से, ये मिलकर भेज रहे हैं। सोमदत्त जी का मैसेज आया है जिला पटियाला पंजाब से, नाभा जिला से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंद कौर मनु। अगला जो संदेश है अनिल मोहन का, इनके साथ है उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक और बोधराज खोरवाल हमें लिखकर भेज रहे हैं, जिन्होंने गीत की जो डिमांड की है वो हम सभी श्रोताजनों को पहले ही सुनवा चुके हैं इस कार्यक्रम में। और अगला संदेश है गुरप्रीत सिंह का, इन जसबीर कौर महिक महिक प्रीत कौर सहज प्रीत सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं ग्राम तंगौरी से।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी कार्यक्रम लेकर ठीक रात के 11:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा।

0: आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं। क्या लिखूँ अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूँ, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि के 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी एवं अंग्रेज़ी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया।

0: इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जाँच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री जे हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्की से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मेमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही मौसम बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with the obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father, Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday, referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Maresi Sfânt in Chișinău. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia, and Romania. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Acavasquez in New Delhi yesterday. During the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education, and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora. Earlier, External Affairs Minister expressed confidence that the visit of Panamanian Foreign Minister Javier Eduardo Martinez Acavasquez will further strengthen bilateral ties across all sectors. Supreme Court has directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired Chief Justices and Judges of the High Courts across the country. A bench led by Chief Justice of India Suryakant directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submit its recommendations to both the Union Government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. In Sikkim, at least 25 people have been trapped inside NHPC's under-construction tunnel in Namchi district. Efforts are on to rescue them. Namchi SSP informed that NDRF and local agencies are making all efforts to rescue them. However, due to leakage of gas, the trapped persons are yet to be evacuated. There was a report of gas leakage following the collapse of the tunnel. The incident occurred under the Memrang police outpost. Senior officials are constantly monitoring the situation on the spot. In Jammu and Kashmir, 4 more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division yesterday, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least 7 people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Poonch districts. Chief Minister Omar Abdullah has announced an ex-gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Poonch district. India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 24 hours. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं, घड़ी ने इशारा कर दिया है कि 12:10 और 11 सेकंड हो चले हैं, यानी कि समय हो चला है रात्रिकालीन सभा को आरंभ करने का। और आज की सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अतुल। समय हो चला है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का भी। जी हाँ, फिल्मी गीतों का वो कार्यक्रम जिसमें लेकर आते हैं हम एक कलाकार और साथ होते हैं फिल्मी गीत, कलाकार की बातें, उनका करियर, उतार चढ़ाव और साथ में गीतों का तालमेल। इस तरीके से कार्यक्रम में आगे बढ़ते चलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ एक जोड़ी है, फिल्म संगीत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गीत निर्देशन से जुड़ी हुई, संगीत निर्देशन से जुड़ी हुई एक जोड़ी की आज हम बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ करते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

कुर्बान फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ और कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। जी हाँ, सुरों का सफरनामा, ये तो ही बात इस गीत की, लेकिन इस गीत में उस जोड़ी का भी हिंट छुपा है जिन्होंने इसका संगीत निर्देशन किया था। जी हाँ, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस संगीतकार जोड़ी की जिसने अपनी धुनों से प्यार, दोस्ती, इबादत और ज़िंदगी के हर रंग को खूबसूरती से सजाया। जी हाँ, आज के हमारे सितारे हैं सलीम और सुलेमान मर्चेंट, दो भाई लेकिन सोच एक। एक तरफ सलीम की शानदार धुनें और दूसरी तरफ सुलेमान की बेहतरीन संगीत संयोजन की कला। जब ये दोनों साथ आए तो बॉलीवुड को मिला ऐसा संगीत जो आधुनिक भी है और भारतीय संगीत की मिट्टी से भी जुड़ा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे उनके बचपन से लेकर बॉलीवुड में उनकी पहचान बनने तक का सफ़र, उनके संघर्ष, उनकी कामयाबी, उनके पुरस्कार, कुछ दिलचस्प किस्से और सुनेंगे उनके कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं उनका एक और खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम सुरों का सफरनामा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल और साथ में एक जोड़ी, संगीत निर्देशन की जोड़ी सलीम और सुलेमान की। जी हाँ, दोनों भाइयों की बात करें तो उनका जन्म मुंबई में हुआ। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए बचपन से ही सुरों से उनका गहरा रिश्ता बन गया। सलीम ने छोटी उम्र में पियानो सीखना शुरू कर दिया, जबकि सुलेमान की रुचि संगीत की तकनीकी बारीकियों में थी। फिल्मों में आने से पहले दोनों ने विज्ञापनों के लिए बड़ी संख्या में जिंगल्स तैयार किए। यही वह दौर था जिसने उन्हें अनुशासन, मेहनत और कम समय में असरदार धुन बनाने की कला सिखाई। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा पर फिल्म इंडस्ट्री की नज़र पड़ी और बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे, लेकिन फिल्मों में पहचान बनाना अभी भी आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ी, यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।

दोस्तों, हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। सलीम सुलेमान के साथ भी ऐसा ही हुआ। विज्ञापनों और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। उनकी शुरुआती फिल्मों में संगीत को सराहना मिली और धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं का भरोसा भी उन पर बढ़ता गया। इसके बाद इकबाल, फैशन, चक दे इंडिया, कुर्बान और बैंड बाजा बारात जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के प्रमुख संगीतकारों में शामिल कर दिया। इन फिल्मों के गीतों ने साबित कर दिया कि सलीम सुलेमान हर तरह के मूड और कहानी के लिए यादगार संगीत रच सकते हैं। उनका मानना है कि एक अच्छा गीत केवल सुनाई नहीं देता, बल्कि महसूस भी होता है। शायद यही वजह है कि उनके कई गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे एक और खूबसूरत गीत, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपनी ईमेल के माध्यम से, ipradiodelhi@gmail.com।

12:36 और 20 सेकंड, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। और श्रोताओं, आज किस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक जोड़ी की। जी हाँ, सलीम सुलेमान। उनके संगीत की बात करें तो उन्होंने कभी खुद को किसी एक शैली तक सीमित नहीं रखा। रोमांटिक गीत हो, सूफी संगीत हो, डांस ट्रैक हो या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स, हर शैली में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके संगीत में लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, खूबसूरत ऑर्केस्ट्रेशन और मधुर धुनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। यही वजह है कि उनके गीत सुनने में जितने आसान लगते हैं, उन्हें बनाना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। सलीम सुलेमान ने अपने करियर में शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर और कई बड़े सितारों की फिल्मों के लिए यादगार संगीत दिया। उनकी धुनों ने फिल्मों की कहानियों को और भी प्रभावशाली बना दिया।

0: कई प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में सराहा गया और उन्हें अनेक नामांकन और अवार्ड्स भी मिले। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो उनका जवाब अक्सर यही होता है, श्रोताओं का प्यार। फिल्मों के अलावा उन्होंने देश विदेश में अनेक लाइव कॉन्सर्ट किए और भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनकी धुनें आज भी नई पीढ़ी के संगीत प्रेमियों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं।
1: Yo ho, I spread some too. I spread.

दोस्तों, कार्यक्रम में अगर संगीत सुलेमान की हम बात कर रहे हैं तो उनके कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी या फिर रोचक तथ्यों की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो क्या आप जानते हैं कि सलीम मर्चेंट केवल संगीतकार ही नहीं है बल्कि एक बेहतरीन गायक भी हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमने गीत भी सुना है उनकी आवाज़ में। उन्होंने कई फिल्मों में और स्वतंत्र संगीत में, जी हाँ, अपनी आवाज़ दी है। एक और ख़ास बात यह है कि दोनों भाई फिल्मों के साथ साथ भक्ति संगीत, स्वतंत्र गीत और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ भी लगातार काम करते रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में उन्होंने नए प्रयोग करने से भी कभी परहेज नहीं किया। सलीम सुलेमान का मानना है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, अच्छी धुन सीधे दिल तक पहुंचती हैं, चाहे श्रोता दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। इसी सोच का असर उनके संगीत में साफ दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि उनका हर नया काम श्रोताओं को कुछ नया अनुभव कराता है।

जी हाँ, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में हम बात कर रहे हैं संगीत सलेमान की जोड़ी की। और कार्यक्रम में समय बचा है कम, तो जल्दी से और भी जानकारी शेयर कर लेते हैं उनके बारे में। संगीत, जी हाँ दोस्तों, समय के साथ संगीत की दुनिया बदलती रही, लेकिन सलीम सुलेमान ने हर बदलाव को खुले दिल से अपनाया। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक, आध्यात्मिक संगीत, देशभक्ति गीतों और सामाजिक संदेश देने वाले कई गीतों पर काम किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते दौर में उन्होंने अपनी आधिकारिक म्यूजिक चैनलों के माध्यम से भी श्रोताओं तक नई पहचान बनाई। उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि अच्छा संगीत किसी एक माध्यम तक सीमित ना रहे। सलीम सुलेमान नए कलाकारों को भी प्रोत्साहित करते हैं और मानते हैं कि भारतीय संगीत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यही वजह है कि उनकी धुनों में कभी भारतीय लोक संगीत की झलक मिलती है, तो कभी पश्चिमी संगीत का आधुनिक अंदाज भी।

तो दोस्तों, आज के इस सफ़र में हमने जाना कि कैसे मुंबई के दो भाइयों ने अपनी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सलीम सुलेमान ने साबित किया कि अच्छा संगीत समय का मोहताज नहीं होता है। उनकी धुनें आज भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं जितनी अपने रिलीज के समय थी। रोमांस हो, सूफियाना एहसास हो या फिर ज़िंदगी का उत्साह, हर भावना को उन्होंने संगीत के माध्यम से खूबसूरती से व्यक्त किया। उनकी यात्रा यानी कि आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत लगातार की जाए तो सफलता देर से सही लेकिन ज़रूर मिलती है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वरों का सफरनामा। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में रात्रि के 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ तो बोल।

बावर्ची फिल्म से गीत सुना मन्ना डे की आवाज़ में, और कार्यक्रम गीत सुना रहे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

सुराग फिल्म का गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में। और जी हाँ, बहुत सारी यादें ज़रूर आपकी ताज़ा हो गई होंगी। भीगा भीगा मौसम, और इस समय अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल भीगा भीगा है। स्टूडियो से बाहर अगर हम देखें तो बारिश की फुहार और मौसम बहुत खूबसूरत, कार्यक्रम भी खूबसूरत है। और आप हैं आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर, जहाँ आज के इस कार्यक्रम में, जी हाँ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, जहाँ लेकर आते हैं हम गोल्डन एरा का फिल्म संगीत, तो उसमें आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल इन खूबसूरत गीतों के साथ। सौदागर फिल्म से एक और खूबसूरत गीत आशा भोसले जी की आवाज़ में।

परख फिल्म के इस गीत में आपने सुना रविंद्र जैन साहब को, और कार्यक्रम में आगे बढ़े तो महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, यकीन मानिए। आप सुन रहे हैं गीत सुनारे, कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होता है, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में गीत आपने सुना पूरब और पश्चिम फिल्म से, और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत शराबी फिल्म से।

0: इसी के साथ आज का गीत सुनारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं को जी पलों में 2 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और एच एस प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. Social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with the delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior, and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said, protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles and resorted to violence, posing a serious threat to public order. Police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said about 70 protesters have been detained. Appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. The Ministry of Law and Justice has released the draft

0: और इसी के साथ गीत बहार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ चित्रा सिंह को।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में हमने लिया है एक गज़ल को फिल्म नाम से। कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: इसी के साथ आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि तदनुसार 21 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन। 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आप सुनेंगे वरुण कुमार पाल का गिटार पर बजाया गया राग नट भैरव।

7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अर्चना आचार्य के भजन। 7:30 का समय रहेगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग, अर्थात हिंदी फिल्म संगीत का। और 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का गायन।

सुबह 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, जिसमें आज का विषय रहेगा भ्रूण चिकित्सा और जेनेटिक्स। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर ज्योति गुप्ता, भ्रूण चिकित्सा और आनुवंशिकी विशेषज्ञ, और साथ ही परामर्शदाता होंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। भेंटकर्ता होंगे दिलीप झा। नौ बजकर 9:30 का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और दिन में 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित। ग्यारह बजकर 30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुर मंजरी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अनुजा झा का सितार वादन। दोपहर 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं कुछ ही पलों में। अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: sonenge.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं ऋतुराज।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10 और 17 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है शोल्जर मूवमेंट, कंधे का मूवमेंट और ताड़ आसन। प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आए। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं वेस्ट की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं, अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था शोल्डर मूवमेंट, अर्थात कंधे का मूवमेंट और ताड़ आसन। प्रस्तुतकर्ता थे योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी शोखन और सुनील गौतम हापुड़िया।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का।